FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की नवीं तिथि तदनुसार दिनांक 30 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 और 27 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज के विचार का विषय है जैसे को तैसा।
3: उक्ति के अनुसार जैसे को तैसा व्यवहार देना चाहिए। सत्य है कि यदि हम कोई व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं तो उसका अर्थ यही लगता है कि वो व्यवहार हमारे दृष्टि में उचित है और हमारे मनोनुकूल है। किंतु यदि वही व्यवहार स्वयं को प्राप्त होने पर हमको अच्छा नहीं लगता तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि वो व्यवहार दूसरे के साथ करते समय हमने ये ध्यान नहीं रखा कि उस व्यवहार से कोई व्यक्ति आहत हो सकता है, अर्थात हमने स्वयं में और दूसरे में भेद किया, जो कि मनुष्यता की दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि हमने जानबूझकर वो व्यवहार दूसरे के साथ किया, अर्थात दूसरे को हमने सायास दुख पहुंचाने का कार्य किया, जो कि एक अपराध है। हम दूसरे को सुख पहुंचाकर स्वयं सुख प्राप्त तो कर सकते हैं, किंतु दूसरों को दुख पहुंचाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यदि दूसरे को दुख पहुंचाकर हमें सुख प्राप्ति का अनुभव होता भी है तो इसका अर्थ है कि हम में मनुष्यता नहीं है, बल्कि हम पाशविक हैं। कल्पना करें कि यदि हमारे समाज में हर एक व्यक्ति पाशविकता का प्रदर्शन करने लगे तो क्या हमारा समाज सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य रह जाएगा। छठे साठ्यम उक्ति का दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि हम किसी व्यक्ति की प्रकृति से पूर्णतः परिचित हैं, यदि हम जानते हैं कि वो व्यक्ति हमारे सद्व्यवहार का अनुचित लाभ लेगा और हमारा एक अनुचित व्यवहार उसके अनुचित व्यवहार को रोकने में सक्षम होगा तो हमारा उसके प्रति अनुचित व्यवहार भी अनुचित नहीं कहा जाएगा। अर्थात छठे साठ्यम की उक्ति का प्रयोग करते हुए यदि हमारा एक अनुचित व्यवहार किसी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार करने की प्रकृति को परिवर्तित करता है तो हमारे अनुचित व्यवहार का उद्देश्य सत्कार के लिए कहा जाएगा। अतः छठे साठ्यम के प्रयोग में विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना विचार किए यदि हम इस उक्ति का प्रयोग करते हैं तो परिणाम अशुभ भी हो सकता है। उदाहरणार्थ यदि कोई

0: अपनी बातों से हमारे हृदय को दुख पहुंचाता है और हम प्रतिक्रिया स्वरूप उसके हृदय को दुख पहुंचा देते हैं, तो ये क्रिया अनवरत चलती ही रह जाएगी और परिणाम दोनों ही के दुख के रूप में सामने आएगा। अतः दुख की क्रिया प्रतिक्रिया को रोककर प्रेम व्यवहार से एक दूसरे के हृदय को सुख पहुंचाने की चेष्टा करना मनुष्यता होगी और मनुष्यता की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आपने जैसे को तैसा विषय पर विचार सुने। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भक्त का सबसे सुंदर श्रृंगार विनम्रता है। भगवान का सबसे प्रिय उपहार है सच्ची भक्ति और ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है प्रेम, सेवा और समर्पण। भक्ति भरा हृदय ही सच्चा द्वार है ईश्वर प्राप्ति का। जो आडंबर और अहंकार का त्याग कर हर प्राणी के लिए करुणा का भाव रखता है, हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, ईश्वर को वही प्रिय है।

हे पवन पुत्र, हे बजरंग बली हनुमान, हे भक्त शिरोमणि, आप हमारी शक्ति, भक्ति, साहस, समर्पण और विश्वास हैं। हे केसरी नंदन, हे मारुति नंदन, राम नाम में बसता आपका पावन धाम है। हे दीन दुखियों के रखवाले, हे संकट मोचन आंजनेय, आपकी सदा जय जयकार हो।

न धन साथ जाता है, न वैभव न अभिमान, साथ चलता है सदा प्रभु नाम। सुख हो या दुख हो, प्रभु नाम ही सहारा है। झूठी माया मोह त्याग कर जिसने नाम सुमिरन किया, उसका जीवन धन्य हो जाता है और वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है।

प्रेम भरे हृदय में ही प्रभु विराजते हैं। जहाँ प्रेम में राधा सा समर्पण होता है, वहीं कृष्ण का वास है, वहीं वृंदावन धाम है। राधा भक्ति है और कृष्ण उस भक्ति में बसी आराधना। जिसने इसे समझ लिया, उसका जीवन सुखी हो गया, उसे ईश्वर का साथ मिल गया।

हे मनमोहन सांवरे सलोने, तेरी छवि देख मन पुलकित हो जाता है। तेरी मुस्कान में ऐसा जादू है जो मन की सुध बुध बिसरा देता है। सांवरे तेरी बांसुरी की धुन सबको नाच नचाए, तेरी मोहनी मूरत बसी जिन नैनन में वो तेरे ही गुण गाएं। हे नंदलाल, हे यशोदा नंदन,

आराधना कार्यक्रम में आज आपने हरिओम शरण, शर्मा बंधु, मोहम्मद रफ़ी, अनूप जलोटा, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में भक्ति वंदना सुनी। आपका दिन सुखद और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। आइए जानते हैं 30 जून की तारीख से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में संसद की भूमिका उजागर करना और लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में संसद का महत्व रेखांकित करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2018 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन साल 1889 में संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना हुई थी। ये संघ मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में योगदान देने के साथ ही विश्वभर के देशों की संसदों और उनके प्रतिनिधियों के बीच समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। श्रोताओं, आज विश्व सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया आज जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से जुड़ गया है और वैश्विक स्तर पर इसके महत्व और प्रभाव को रेखांकित करता है विश्व सोशल मीडिया दिवस। 30 जून वर्ष 2010 को वैश्विक मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनी मैशेबल द्वारा स्थापित ये दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सकारात्मक पहलुओं पर विचार करने और उनके उपयोग के लिए एक संतुलित, व्यवस्थित और जिम्मेदार दृष्टिकोण के प्रयास हेतु जागरूक और प्रेरित करता है। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी है। ये दिन वर्ष 1908 को साइबेरिया के तुंगस्का क्षेत्र में पृथ्वी के वायुमंडल में हुए एक तीव्र विस्फोट की स्मृति में मनाया जाता था है। इस विस्फोट में पृथ्वी के एक बड़े भूभाग में जंगल और पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। इस दिवस विशेष का उद्देश्य है पृथ्वी पर उल्कापिंड के खतरों और उससे जुड़ी रिसर्च के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। श्रोताओं, आज ही के दिन संथाल विद्रोह आरंभ हुआ था। 30 जून वर्ष 1855 को पश्चिम बंगाल के संथाल क्षेत्र में संथाल आदिवासियों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और शोषण के खिलाफ ये विद्रोह आरंभ किया था। इस विद्रोह में आदिवासी समुदाय ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। संथाल हुल के नाम से प्रसिद्ध इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। आज ही के दिन श्रोताओं, वर्ष 2013 में क्रिकेट के एक रोमांचक मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2013 का खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत, महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी की। उनका जन्म 4

सितंबर वर्ष 1825 को मुंबई में हुआ था। उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। वो ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी शासन द्वारा किए जाने वाले भारत के आर्थिक शोषण को विश्व पटल पर रखा और धन निकासी सिद्धांत के माध्यम से भारत की गरीबी के प्रमुख कारण उजागर किए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे दादा भाई नौरोजी 30 जून वर्ष 1917 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्रोताओं, 30 जून वर्ष 1934 को बेंगलुरु में जन्म हुआ था भारतीय रसायन विज्ञानी CNR राव का। उन्होंने ठोस अवस्था रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शोध किए और लगभग 1500 शोध पत्र और 58 पुस्तकें लिखी। उन्हें विश्व

के आर्थिक शोषण को विश्व पटल पर रखा और धन निकासी सिद्धांत के माध्यम से भारत की गरीबी के प्रमुख कारण उजागर किए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे दादा भाई नौरोजी 30 जून वर्ष 1917 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्रोताओं, 30 जून वर्ष 1934 को बेंगलुरु में जन्म हुआ था भारतीय रसायन विज्ञानी CNR राव का। उन्होंने ठोस अवस्था, रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शोध किए और लगभग 1500 शोध पत्र और 58 पुस्तकें लिखी। उन्हें विश्व के अनेक देशों से मानद उपाधियां और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं, आज जन कवि वैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन की जयंती भी है। उनका जन्म 30 जून वर्ष 1911 को बिहार के मधुबनी में हुआ था। हिंदी और मैथिली साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध करने वाले प्रगतिशील साहित्यकार नागार्जुन को शून्यवाद के लेखक के रूप में भी याद किया जाता है। रतिनाथ की चाची, युगधारा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, दुख मोचन और बलचनामा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रोताओं, सिने जगत की मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी वीर जी शाह का जन्म भी आज ही के दिन 1928 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हुआ था। छलिया, बैराग, सरस्वती चंद, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई यादगार फिल्मों के सदाबहार गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली धुनों से सजाया है। और श्रोता, इस जानकारी के साथ ही संपन्न होती है आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। आप सभी को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। आज विविधा में बात विश्व सोशल मीडिया दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया एडिक्शन और टेक्स्ट नेक सिंड्रोम पर। श्रोताओ, एक समय था जब सूरज की पहली किरण के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती थी और परिवार के बड़े बुजुर्गों के अनुभव सुनकर हम सोते थे, मगर बदलते वक्त के साथ हमारे जीने के तौर तरीके बदल गए। आज सुबह आँख खुलते ही पहला स्पर्श हमारा होता है हमारे मोबाइल का, और सोने से पहले भी आखिरी नज़र रहती है हमारी अपने मोबाइल पर। बीच का पूरा दिन नोटिफिकेशंस, रील, लाइक्स और स्क्रॉलिंग की अंतहीन दौड़ में गुजर जाता है श्रोताओं, क्योंकि हमारा मोबाइल हर सेकेंड हमारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार जो रहता है। इसका अल्गोरिदम हमारे दिलो दिमाग को जकड़ सा लेता है और हम न चाहते हुए भी इसके जादुई संसार में खोते चले जाते हैं। श्रोताओं, ये एक ऐसा दौर है जहां लोग एक ही छत के नीचे बैठकर भी एक दूसरे से दूर हैं। रिश्ते ऑनलाइन हैं मगर दिल ऑफलाइन हो गया है। हमारे मुस्कान चेहरे पर कम, प्रोफाइल पर ज़्यादा दिखाई देने लगी है और हमारे सिर बड़ों के सम्मान में झुकने के बजाय मोबाइल के सामने हरदम झुके रहते हैं। आज सोशल मीडिया का मकड़जाल हमारे पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने को उलझाने के साथ ही सेहत और समय भी बर्बाद कर रहा है। और कमाल की बात यह है श्रोताओं कि इस लत के लिए जिम्मेदार हम खुद ही हैं। जी हाँ श्रोताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सोशल मीडिया एडिक्शन के लिए हमारे शरीर में फील गुड कराने वाला डोपामाइन हार्मोन जिम्मेदार होता है। जब हम मोबाइल स्क्रीन पर कोई रील स्क्रॉल करते हैं, कोई लाइक हमें मिलता है या किसी नोटिफिकेशन की टोन बजती है, तो हमारे शरीर में बनने वाला डोपामाइन केमिकल रिलीज होकर हमें बार बार मोबाइल चेक करने के लिए प्रेरित करता है। और बार बार मोबाइल चेक करने की आदत से अटेंशन स्पैन यानी हमारी काम पर ध्यान लगाने की क्षमता घटने लगती है। श्रोताओं, सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण आज टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सोने से पहले मोबाइल देखने की आदत से अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और सुबह उठने में थकान भी महसूस होती है, क्योंकि मोबाइल की ब्लू लाइट शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है और स्क्रीन से चिपके रहने से मोटापा, सुस्ती, आंखों में सूखापन, कम उम्र में डायबिटीज़ और हार्ट अटैक की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लगातार मोबाइल पर झुके रहने से टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के मामले भी आज काफ़ी बढ़ रहे हैं।

0: घंटों स्क्रीन पर सिर झुकाए रहने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर ज्यादा दबाव बढ़ता है और गर्दन की नसें दबने के कारण ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, जिस कारण सिरदर्द, कंधों में जकड़न और हाथों में झनझनाहट की समस्या हो जाती है। श्रोताओं, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम से बचने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करते समय उसे अपनी आँखों की सीध में रखें और गर्दन सीधी रखी जाए। लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करने के बजाय बीच बीच में ब्रेक लें और इस ब्रेक में अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया करें। और साथ ही सोशल मीडिया एडिक्शन कम करने के लिए कुछ आदतें आप अपनाएं। सबसे पहले अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें और स्क्रीन टाइम कम कर इसे रियल टाइम में बदलें। इस टाइम में अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं, अपनी कोई शौक पूरे करें, सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपवास करें। यदि कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाए रखें तो बहुत अच्छा है। अपने घर में नो नोटिफिकेशन फ़ोन जोन बनाएं, डाइनिंग टेबल पर और खाना खाते समय और रात को एक घंटा पहले सोने से मोबाइल से दूरी सोशल मीडिया एडिक्शन को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। श्रोताओं, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स में उलझने के बजाय परिवार के साथ ज़िंदगी बिताइए, जीवन साथी के साथ समय बिताइए, बच्चों के साथ खेलिए। यही तो है असली ज़िंदगी, इसी में है जीवन की खुशी। और ये वो खुशी है श्रोताओं, जो सोशल मीडिया से लॉग आउट होने के बाद ही शुरू होती है। इस लाइफ का आनंद लीजिए। आज विविधा में इतना ही। शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26th-2023 द्वितीयरक्षा अलङ्करणसमारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्यपुरस्काराः रक्षासैन्यबलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षकबलानां, केन्द्रशासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 युद्ध सेवापदकानि, 30 परम विशिष्ट सेवापदकानि, 12 उत्तम युद्ध सेवापदकानि, 50 अतिविशिष्ट सेवापदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलङ्करण समारोहे प्रथमचरणस्य शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स् देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स् देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत 15 उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन, संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 नवान्वेषणेन सुस्थिरतया, संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स् देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स् देशस्य सर्वकाराय, जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रीय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्य

0: कृते अन्येषु राष्ट्रीय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेश प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन गत सप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनं उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहान असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायां असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 75-दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों

0: और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुँच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान से अगला प्रसंग। प्रातः 8:30 पर होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। महिलाओं के कार्यक्रम ऐपण में दोपहर 12:30 पर आज चर्चा होगी घर का कूड़ा कैसे कम करें विषय पर, साथ ही गैर संचारी रोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कूड़ा करें कम तो स्वस्थ रहेंगे हम, इस विषय पर श्रीमती ज्योति पांडे और श्रीमती बीना पांडे सदस्य मां नंदा सुनंदा स्वयं सहायता समूह थाना बाजार अल्मोड़ा से मंजू बोरा की क्षेत्र संकलित बातचीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1317वीं कड़ी हम लेकर आएंगे दोपहर 1:30 पर और खेती की बातें कार्यक्रम होगा 2:30 पर, जिसमें आज डॉक्टर अरुण किशोर की वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ता का विषय रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में नट फसलों की वैज्ञानिक खेती। संध्या 5:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में आज की बात के विषय रहेंगे। अपडेट रहें अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। व्यक्ति विशेष में जानेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, साथ ही होगा आज का इतिहास। उत्तरायण कार्यक्रम में संध्या 5:45 पर आज चर्चा होगी दादा भाई नौरोजी पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर। लखवीर सिंह लखा और शर्मा बंधु की गाई भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत कार्यक्रम में संध्या 6:41 पर। किसान वाणी कार्यक्रम में संध्या 7 बजे आज की बातें

कार्यक्रम में जानेंगे जैविक खेती के बारे में। चर्चा होगी विकसित खेती के लिए प्रौद्योगिकी नवोन्मेषी नवाचार विषय पर। खेती बचाओ अभियान के तहत सुनेंगे खाद्य तेल मिशन के बारे में जानकारी, साथ ही सुनेंगे डॉक्टर कंचन आर्या से भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय होगा सरकार के 12 वर्ष वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन। हमारे केंद्र से कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे प्रातः 7:10 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में, पूर्वाहन 11:30 पर लोकसुर, मध्याह्न 2 उत्तराखंड के लोकगीत और संध्या 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में। सुगम संगीत सुनिएगा पूर्वाहन 10:05 पर, सबरंग कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर, रात्रि 8 सबरस कार्यक्रम और रात्रि 9:30 पर होगा गजलों का फरमाइशी कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे गीत निर्झर कार्यक्रम में सुबह 9:05 पर, सुरबहार कार्यक्रम में पूर्वाहन 10:35 पर, 11 सैनिकों के लिए, मध्याह्न 12 मेरी पसंद, 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3 सदाबहार फिल्मी गीत, संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। और आज रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से 140वां प्रसंग। गायक हैं ए हरिहरन और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या, देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृत को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को MRI, डिजिटल मेमोग्राफी और AI आधारित पोर्टेबल एक्सरे मशीन कराई जाएंगी उपलब्ध। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों के आकलन के लिए 2 जुलाई को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों के तहत आज देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। अल्मोड़ा जिले के लमगाड़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु। और हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से प्रदेश को 4 MRI मशीनें, 5 डिजिटल मेमोग्राफी मशीनें और 75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के उपलब्ध होने से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं का विस्तार होगा तथा रोगों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निदान में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में AI आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों के माध्यम से मरीजों को उनके निकट ही बेहतर जाँच और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता का परीक्षण करने के लिए 2 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल की तैयारियों के तहत आज राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून में सुबह 10 बजे से टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। इसमें विभिन्न विभाग और जिलों में संभावित आपदा परिदृश्यों के आधार पर अपनी कार्य योजना और समन्वित प्रतिक्रिया का अभ्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जल ग्रहण विकास घटक के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में योजना की प्रगति और सहायता राशि की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए उत्तराखंड में 15 जल ग्रहण विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 84,000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जाएगा। परियोजनाओं की कुल लागत 232,26,00,000 रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 209,03,00,000 रुपए निर्धारित की गई है। अब तक राज्य को 106,05,00,000 रुपए की केंद्रीय सहायता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए उत्तराखंड को 31,58,00,000 रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें 15,79,00,000 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है, जिसमें परियोजनाओं का कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सकेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से विनोद पोखरियाल।
1: अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा थाना क्षेत्र में कल एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार सभी लोग विशौद बैगनिया गांव से अपने गांव बलिया लौट रहे थे। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रतिभाग किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। सम्मेलन में देशभर के ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं, नवाचारों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सम्मेलन में प्राप्त अनुभवों और विभिन्न राज्यों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का उपयोग उत्तराखंड में भी किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह क्याड़ा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति और संत समाज के सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ को दिव्य, भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संत समाज के सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के अनुरूप ही सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा अखाड़ों के लिए आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाएंगी। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि मेला क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सीवर, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और शिविर क्षेत्रों के विकास सहित आधारभूत सुविधाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है ताकि कुंभ शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। बैठक में विभिन्न अखाड़ों के संतों ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव दिए। प्रदेश भर में सहकारिता सप्ताह 2026 की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 6 जुलाई तक राज्य भर में सहकारिता से जुड़े विभिन्न जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पौड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कल सहकारिता सप्ताह का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सहकारिता को गांव गांव तक पहुंचाकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि देश में 1 लाख युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही सहकारी समितियों को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है तथा किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, विपणन सुविधाएं और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. रावत ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश के सभी सहकारी समितियों के माध्यम से व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव एवं पौड़ी जिले के प्रभारी सचिव दिलीप जावलकर ने पौड़ी में जल स्रोत एवं नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण की बैठक में पूर्वी और पश्चिमी नयार नदी के पुनर्जीवन के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि नयार घाटी जिले में पेयजल, सिंचाई और ग्रामीण आजीविका का प्रमुख आधार रही है, इसलिए नदी और उससे जुड़े जल स्रोतों का संरक्षण पर्यावरणीय आवश्यकता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नदी पुनर्जीवन योजना के माध्यम से सूखते जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर क्षेत्र की दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत जलागम आधारित उपचार, कंटूर ट्रेच, तालाब और चेकडैम निर्माण, माइक्रो प्लानिंग, जियो टैगिंग तथा डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाएंगे। इन प्रयासों से वर्षा जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार, मृदा अपरदन पर नियंत्रण और नदी तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण लिखता है कल से वजूद में आएगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। अमर उजाला लिखता है मदरसा बोर्ड कल होगा खत्म, मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ेंगे हजारों बच्चे। हरिद्वार दुर्घटना पर अमर उजाला लिखता है हरिद्वार में बस पिकअप में भिड़ंत, अल्मोड़ा में कार पलटी, 7 की मौत। 10वीं के मौजूदा सत्र पर नीति पर हिंदुस्तान लिखता है कि 10वीं में मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू होगी। राज्य लोक सेवा आयोग के हवाले से हिंदुस्तान समाचार लिखता है PCS के 63 पदों पर जल्द होगी भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के देहरादून के आयोजित कार्यक्रम की खबर पर अमर उजाला ने लिखा है विकसित भारत तभी सार्थक जब हर नागरिक हो स्वस्थ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को MRI, डिजिटल मेमोग्राफी और AI आधारित पोर्टेबल एक्सरे मशीनें कराई जाएंगी उपलब्ध। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों के आकलन के लिए 2 जुलाई को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों के तहत आज देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु और हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मोहन सिंह नेगी के स्वर में इस देशभक्ति गीत के साथ।

आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मोहन सिंह नेगी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आइए सुनते हैं मोहन सिंह नेगी के स्वर में ये छपेली।

0: ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो, सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं,
1: विश्वास जगाएं।
2: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आइए सुनते हैं मोहन सिंह नेगी के स्वर में ये पर्यावरण गीत।

ये कुमाऊनी लोकगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है लोक मंजरी। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं झोड़ा मोहन सिंह नेगी के स्वर में।

मोहन सिंह नेगी के गाए इस जोड़े के साथ ही कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: AIR at 90.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री

0: अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
1: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है।

0: सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, दसवीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
5: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
4: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
6: Chief Minister Shubhendu Odhikari announced in the assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state cabinet meeting on Thursday. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on the total of 9 subjects, including marriage, divorce, adoption, and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis, and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
4: Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
7: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks, and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend measures to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
4: Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road taxes. The new policy also offers a 1 lakh rupee incentive for purchasing new EVs while scrapping old vehicles, and mandates that only electric two-wheelers can be registered starting April 2028. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the government has devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
8: This is truly a historic day. Delhi EV policy, which we aim to implement starting July 1, 2026, following the LG approval, the policy will remain in effect until March 31, 2030. It focuses entirely on electric vehicles, especially zero-emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city. For the benefit of its residents, we have devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
4: The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the National Capital Territory of Delhi will begin today. Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar announced this while briefing the media in New Delhi yesterday. He said booth-level officers, BLOs, will visit every household from today till the 29th of July to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. Mr. Kumar said that claims and objections can be filed between 5th of August to 4th of September. Final electoral roll will be published on the 7th of October. He informed that electors can also fill enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. India has strongly condemned Pakistan's airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians, including women and children, and injured 163 others. In a statement, the External Affairs Ministry said that this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and a direct threat to regional peace and stability. It reflects Pakistan's persistent pattern of reckless behavior and its futile attempt to externalize internal failures through desperate acts of violence beyond its borders. India conveyed its condolences to Afghan families that have lost loved ones and prayed for early recovery of those injured. India also reiterated its unwavering support for Afghanistan's sovereignty and territorial integrity. The Indian Army has dismissed media reports claiming that the Chinese People's Liberation Army, PLA, recently encroached into Arunachal Pradesh and set up camps. The Army said that such reports are incorrect and without any basis. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsandair.com. www.gov.in and download news on AIR app. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Andhra Pradesh from today. During the visit, she will attend the first convocation ceremonies of the Central Tribal University of Andhra Pradesh and the Central University of Andhra Pradesh. We have a report.
9: The president will grace the maiden

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब का शहनाई पर बजाया राग मियां की तोड़ी। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव प्रस्तुत करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। हज़ारों फूल खिलते हैं गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। बेहद स्वागत आप सभी का कार्यक्रम गीत निर्झर में। सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी के नाम। मोहब्बत में नहीं फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं फ़र्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले

कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई थी यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनीता खड़से की, और बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त नेहा जैन दीपक मयंक चेतना नाहटा दीक्षा और कुश मूड़त की। आप सभी ने सुनना चाहा था मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे प्रकाश मेहरा और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज में, गीतकार गुलजार और संगीतकार ए आर रहमान। और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी है घरौड़ा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान कांता रानी गुंजन साहिल और वाणी जयजान, जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़, अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकरम अकमल नफीसा प्रवीण जोहानुल हौदा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू और डब्बू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा और पूजा परिहार, और तिलक नगर वेस्ट दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला ने। तो लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश पर गुरु फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ में।

0: अरे सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले

0: साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे
5: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशर, डॉक्टर इशिता साहनी झुमरी तलैया से, डॉक्टर सोनम बरका काना से नाजनीन तबस्सुम अफजल इब्राहिम मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिम, कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसु तासु अर्णव आनंद सत्यम आनंद, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला श्याम कुंवर आसमा श्याम कुंवर दीपक श्याम कुंवर अनुश्री श्याम कुंवर, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे वसंतराव भोजने पीएस नहावकर मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहनी ऋतिक बलवीर सिंह, ये सब हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राफिया शेख शेख रहीम मुन्ना दानिश और आशिफ शेख, और कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत उत्तर प्रदेश से आशिफ अली खान मोमिना नाज मुस्कान आसिफ सादिक अली खान सारिक अली खान, और खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीतू लक्ष्य मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा नानक चंद्र मेहरोत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कुनिका सिक्का और डुग्गू सिक्का। आप सभी ने सुनना चाहा है अंदाज फिल्म का गीत अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो की आवाज़ में, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

दोस्तों, मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की सुरीली मधुर धुनों से सजे गीतों की लंबी फेहरिस्त है। उनके दिलकश सदाबहार संगीत का जादू सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस जोड़ी के कल्याण जी शाह का जन्म हुआ था आज ही के दिन साल 1928 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। उन्होंने 250 से भी ज़्यादा गीतों को अपनी सुरीली धुनों से सजाया। उन्हें याद करते हुए उनकी मीठी धुनों से सजी रखवाला फिल्म का गीत सुनवाने का अनुरोध हमारे पास आया है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार का इसी गीत को सुनना चाहा है। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। तिलक नगर वेस्ट दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला। लाला बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड से बाबा फरहान, संजू सामिया, आफिया मुमताज़ अमान, नीलोफर शन्नो और सब्बो। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और चारुवी सांवले। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार और इनके परिवार के सभी सदस्य। और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा और स्वीटी छावड़ा और इनके साथ ही इंद्रजीत कौर छावड़ा। तो लीजिए, पेश है आप सबकी फरमाइश पर रखवाला फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

काटा रोड वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, मायरा सुरोशे। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। शनि मंदिर चौक खंडवा से अनीता सैनी, दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी। कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। धनौत तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरती जजौरिया और गुड्डू। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन। सरगांव बाजार छत्तीसगढ़ से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन।

रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल और अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और सुनील जनागल। आप सभी ने सुनना चाहा है अनुपमा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी और सुनील पाठक, जमशेदपुर सुपाही साही गांव से निशा कुमारी, रेशमा कुमारी और देवेन, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायणी

ले आशीष मुरहेकर, गांव और डाकघर निमनाबाद, जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जविंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, और भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, कमल और किशोर साह, कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, और कोयते बस्ती पुनावले से डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार। आप सभी ने सुनना चाहा है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दिल परदेसी हो गया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद, पीयूष कुमार, कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले, पुनावल्ले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने, शायशा सोनवने, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और इनका पूरा परिवार, पिंगावाला चौक गोरिया जलंधर से

वने, करिश्मा सोन वने, अविका सोन वने, विशाखा सोन वने, शायसा सोन वने, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और इनका पूरा परिवार। पिंगावाला चौक गोरिया जलंधर से ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और साहिद। ग्राम खड़कुना जोली अल्मोड़ा उत्तराखंड से दिव्यांशु लोहनी, प्रमोद लोहनी, खगेश लोहनी, मुकेश लोहनी, ज्योति, भूमिका लोहनी, अमरनाथ लोहनी, मुनीन्द्र लोहनी, सुरेश लोहनी, मानस तिवारी, देवांश तिवारी, मालविका उपाध्याय, ईशिका और इनके परिवार के सभी सदस्य। और छत्तरपुर नई दिल्ली से महेश, कीर्ति, दिवाकर, दिव्या, अजय और इनके परिवार के सभी सदस्य और बेबी अनवी। और ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, निधि वर्मा और निखिल वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर पेश है दिल परदेसी हो गया फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज़ अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, मुबीन अब्बासी, यशफ अब्बासी, अनम अब्बासी, मुंदी चक्र भागलपुर से कमल किशोर शाह, दिलीप कुमार सोनी, अश्विनी कुमार शाह, अमरदीप कुमार शाह, कली और मुस्कान, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती और देवाश्री, बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनीत मूड़त, नेहा जैन, दीपक मूड़त, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, ये सब हैं किशनगंज बिहार से। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आसलगांव बाजार तहसील जलगांव जामोद महाराष्ट्र से राजू माड़े, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे। शेगांव से संतोष काले, उमरा उटाली खाम गांव से गजानन सालोकर जी, सुरेश वैसे पाटिल जी, और सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला और वसीम बेगम। गांधी बाजार अकोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और धनंजय कटंकर। सुराणा मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अघाड़े, लालेंद्र हालेंद्र आचार्य, रावनी जैन और प्रमोद ब्रह्माणे। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण, रमेश मिगलानी, लालमाता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ से राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। आप सभी ने सुनना चाहा है पाकिजा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

पाकिजा फिल्म के इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय और नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा की।

लता मंगेशकर के गाए पाकीज़ा फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे के अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़

प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आइए सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज में ये नगमा।

सबरंग कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी का कलाम। फनकार हैं चंदन दास।

चंदन दास के गाए इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी के इस कलाम के साथ ही सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आप हमारे देहरादून केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप यशोदा पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है और अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण USMEA अस्तित्व में आ गया है। यह नया निकाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने और विनियमित करने का कार्य करेगा और प्रदेश के सभी 452 मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी है। यह मान्यता 3 शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगी। इसके अलावा मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी और प्राधिकरण मदरसों का भौतिक निरीक्षण करेगा। मदरसों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन करने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करना होगा। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बीते 14 मई को मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान संबंधी मान्यता नियमावली 2026 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की थी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से प्रदेश को 4 MRI मशीनें, 5 डिजिटल मेमोग्राफी मशीनें और 75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के उपलब्ध होने से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं का विस्तार होगा तथा रोगों की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निदान में सहायता मिलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा लगातार दूसरे वर्ष भी टनकपुर होकर गुजरेगी, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह है। कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN ने TRC पर्यटन विश्राम गृह में यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी 4 जुलाई को यात्रियों का पहला दल टनकपुर पहुंचेगा, जिसे 5 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बार यात्रा के दलों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। आगामी जुलाई और अगस्त माह में टनकपुर नगर बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रहने वाला है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार योजना की संशोधित लागत को स्वीकृति दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से संचालित करने के लिए जल्द ही मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज की मेंटेनेंस के लिए भी प्रावधान रखे जाने के निर्देश दिए। बैठक में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ऊर्जा पार्क परिसर में सुपर ECBC कार्यालय भवन निर्माण, सहजधारा रोड वाटर सप्लाई स्कीम को भी स्वीकृति दी गई है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास राजस्थान के 4 दिवसीय भ्रमण पर हैं। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन कर उनकी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राजस्थान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए संचालित योजनाएं और राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की विभिन्न योजनाओं और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। सेवा योजन कार्यालय देहरादून ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु रोजगार मेला आयोजित किया। मेले में 39 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कंपनियों में चयन किया गया, जबकि 23 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के साक्षात्कार के लिए चुना गया। इस अवसर पर 12 निजी कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर साक्षात्कार लिए। मेले में देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से 282 युवक युवतियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने समाधान दिवस पर विदेशों में रोजगार का झांसा देकर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर 15 युवाओं ने विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज की। पीड़ितों ने बताया कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए और पासपोर्ट हड़प लिए गए और अब पैसे वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर जालसाज के खिलाफ गैंगस्टर जैसी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समाचारों का ये बुलेटिन

0: समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिनेमाघरों से उतर तो जाती हैं मगर दर्शकों के दिलों से कभी नहीं उतरती। जब भी इन फिल्मों का नाम लिया जाता है, सुनहरे दौर की खुशबू सी बिखर जाती है हमारे चारों ओर। सुरबहार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही कालजयी फिल्म, मेरे सनम से लिए चंद सुरीले नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

दोस्तों, फिल्म निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक अमर कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म मेरे सनम साल 1965 की सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अदाकार विश्वजीत मुखर्जी और अदाकारा आशा पारेख के साथ प्राण, मुमताज़, राजेंद्र नाथ और नाजिमा जैसे दिग्गज कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका अमर गीत संगीत था। संगीतकार ओपी नैयर की सुरीली धुनों से सजे मजरूह सुल्तानपुरी के दिल छू लेने वाले बोलों को रफ़ी साहब और आशा भोसले की जादुई आवाज़ ने सदा के लिए अमर कर दिया था इस फिल्म में। लीजिए पेश है अगला गीत, एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे सनम फिल्म के चंद सुरीले नगमे। दोस्तों, फिल्म मेरे सनम रहस्य, रोमांच, प्रेम, त्याग, विश्वास और समर्पण की भावनाओं के साथ गलतफहमियों की कसक, मिलन की उम्मीद, जुदाई का गम

का एक ऐसा जाल बुनती है जिसमें उलझकर दर्शक पर्दे से अपनी नज़रें नहीं उठा पाते। नायिका और नायक की केमिस्ट्री इतनी सहज और सच्ची महसूस होती है कि दर्शक उनकी खुशी में मुस्कुराते हैं और गम में आंसू बहाने लगते हैं। सशक्त कहानी, दमदार अदाकारी और सदाबहार गीत संगीत से सजी इस फिल्म ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। लीजिए पेश है मोहब्बत में डूबी नायिका के अरमानों से सजा ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों, सुपरहिट फिल्म मेरे सनम हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है। वक्त बदला, तकनीक बदली, मगर इस फिल्म का आकर्षण आज भी वैसा ही है। मोहब्बत में विश्वास बना रहे तो वक्त और परिस्थितियां भी दो दिलों को अलग नहीं कर सकती, यही संदेश देती है इस फिल्म की कहानी। ये फिल्म मनोरंजन के साथ ही पारिवारिक रिश्तों की अहमियत भी समझाती है। लीजिए सुनिए सच्ची मोहब्बत की ताकत का एहसास कराता ये गीत और महसूस कीजिए

दोस्तों 60 के दशक की बेहतरीन फिल्मों में शामिल मेरे सनम फिल्म का फिल्मांकन कश्मीर की खूबसूरत वादियों में किया गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। हालांकि इसे कोई पुरस्कार तो नहीं मिला, मगर अपनी मधुर धुनों, हल्की फुल्की कॉमेडी, आकर्षक लोकेशन और कलाकारों की शानदार अदाकारी के कारण इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा है। कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

सुरबहार कार्यक्रम में आज आपने मेरे सनम फिल्म के चंद सुरीले गीत सुने और अब मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही सुरबहार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

हम भला मानो बुरा मानो। सुर बहार, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 11 बजे हैं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था शहीद फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, देव कोहली के बोलों को संगीत से सजाया था आनंद राज आनंद ने। और अब आइए सुनते हैं सरस्वती चंद फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, कन्यादान फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मनहर की आवाज़ों में। संतोष आनंद के बोलों को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

सैनिक भाइयों, अगला गीत हमने लिया है तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ में। एमजी हसमत के बोलों को संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं उपकार फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार गुलशन बावरा और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

सैनिक भाइयों, लता मंगेशकर के गाए उपकार फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता तिवारी के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: समूह स्वरों में ये कुमाऊनी लोकगीत अभी आपने सुना।
1: के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: श्रोताओं, ये है अनीशा गोसाई गढ़वाली लोकगीत के साथ।

0: Akashvani at 90.
1: और अब समापन कर रहे हैं लोकसुर कार्यक्रम का गढ़वाली लोकगीत के साथ। कलाकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
2: श्रोता अभी सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू बांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का। श्रोताओं, मुस्कुराना, हंसना जिंदगी की धड़कन की तरह है, ये हमारी रोज की सुबह की प्रार्थना की तरह है, उपासना की तरह है। तभी तो कहते हैं मुस्कुराइए, खूब हंसिए, गुनगुनाइए। और किसी ने क्या खूब कहा है, अपने आंसुओं को

इतना महंगा कर दो कि उन्हें कोई खरीदने की कोशिश न करे, और अपनी मुस्कान को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई उसे पाने की चाहत करे और कुछ यूं ही गुनगुना उठे।

श्रोताओं, मुस्काने के भी मुस्कुराहट के कई अंदाज है। जैसे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है। सच, ऐसी मुस्कुराहट पर भला कौन नहीं फिदा होना चाहेगा, जिसमें अपनापन हो, खुशी के खूबसूरत लम्हे हो, हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का जज्बा हो। ऐसी मुस्कुराहट को तो सलाम करते हैं।

कल चौदहवीं की रात थी। सब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। और चांद मुस्कुराए, सितारे शर्माए, हाथों में किसी खास का हाथ हो तो श्रोताओं, ऐसे में यही नगमा याद आता है।

श्रोताओं, कहते हैं ना कि हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने वाले को सकारात्मकता से भर देता है। सच, मुस्कुराना ना केवल मुस्कुराने वाले को सुख देता है, बल्कि सामने वाले की उदासी, तनाव, अवसाद को भगा देता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, सामने हो अगर कोई तो मुस्कुराइए, साथ में है कोई तो मुस्कुराइए, बस मुस्कुराइए और खुशियां ही फैलाइए।

तो श्रोता, हमारी ज़िंदगी में जब हम मुस्कुराते हैं तो इसके कई अंदाज निराले होते हैं। तो मुस्कुराहट की जब बात चली है तो कुछ ऐसी भी मुस्कुराहटें होती हैं जैसे कि इन साहब की हैं।

तो श्रोताओं, हंसते गाते मुस्कुराते गुनगुनाते ये जीवन बहार हो जाए, खुशहाली संग हर दिल भीग जाए, खुशी की हर बात सफल हो जाए, जिंदगी मुस्कुरा उठे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।

और अब श्रोताओं, चलते चलते गुलजार साहब की चंद पंक्तियों संग आप भी मुस्कुराइए और कुछ एहसास खुद महसूस कीजिए। कुछ हंस बोल लिया करो, कुछ हंस बोल लिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। यूं तो बहुत परेशानियां हैं तुमको भी मुझको भी, मगर कुछ फैसले वक्त पे डाल दिया करो। ना जाने कल कोई हंसाने वाला मिले ना मिले, इसलिए आज ही हसरत निकाल लिया करो। सच गम बांटिए, मुस्कुराहटे पाइए, फिलहाल ये गाना गुनगुनाइए।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण।

0: गांव था फैल जा।
1: और बीमारियों को फैलू, लेकिन हमारे घर की व्यवस्था हमारे हाथ में है। हम खुद यह व्यवस्था में सुधार कर भी अपन कुल के कम कर सकनो, सामान लेने वक्त घर बटी झल ले जा सकनो, और पैकेट बंद सामानों कम से कम प्रयोग करो, प्लास्टिक का भानो प्लास्टिक का डबू प्रयोग ला कम कर सकनो। ये जल्दी जल्दी टूट जानी और फिर कूल बढ़ूनी, टूटी फूटी ज्वाते चप्पलों को ले एकत्र कर भी धरण नीचे। जब कामक नीचे तो कह बंद कूड़क भान में या कूड़ादान में खिद दी, जाग जाग कह कूड़ादान लगा रही, वो हमारे सहूलियत के लीजिए लाग रही, ताकि हमार गली बाखई बाट घाट सड़क साफ रह सको कभी। तो कोशिश यही करन चाहे कि हम एक जागरूक नागरिक बनो और जाग जाग लाग रही कूड़ादानों प्रयोग करो, जो गुणी वाल जगह दियो, और आस पास जब जाग छू जब तो सड़ने गड़ने वाल कूड़क में गड्ढे डाल दी, जो बाद में बढ़ जाल हमारा खाद। यस करबेर हम कूड़क कम करबेर अपन स्वास्थ्य लाभ कर सकनो और सामाजिक साफ सफाई स्वच्छता में अपन योगदान ले दे सकनो। तो दगड़े अबड़नो कार्यक्रम में आगिल और सुनो यह संदेश।
2: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो,
3: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो, सारा सामान ISI का ही है।
2: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
3: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
2: झगड़ा मिटाएं,
3: विश्वास जगाएं।
4: जागो ग्राहक जागो।
1: लगड़े अब कार्यक्रम में आगे सुनो दीवान सिंह गनवाला गाया लोकगीत।

0: दगड़ियों मन की सब हो ठुल धन के हूँ स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ छो शारीरिक रूप ले मानसिक रूप ले तो मानो की हम दुनिया भर सब खुशी पहली कभी। आजकल जदुक हमार खान पीण में वलपल चीज में हमार धन खर्च नहीं हूँ वह बेर ज्यादा दुख पीड़ में खर्च है जा पतना कस बखत आ गई। जैसे मौसम बदे हूँ के न के परेशानी है जाए कती वायरस रोग आया जबो नानतीन स्कूल जाने जबो वहाँ पे बीमार है जाने हम चार जानिया में गए जबो वहाँ पे बीमार है जानू कबत है पर्यावरण इधुक प्रदूषित हरू हाउ इधुक दूषित हरे वेल बीमारी है जाए कबत है जल जनित रोग है जानी जल संबंधी जो प्रदूषण हरू वो मैं रोग आ जा। और कभे कभे हम जब इथा उथा जानू गलियों में मोहल्लों में बाखई बाखई में सड़कों में तो कूड़ा का ढेर देखेनी और कूड़ा ढेर यस देखेनी कि एक भवन हवेला ठुल है जानी और जब वो फैल जा सड़कों में फिर सोचो कि कसकस बीमारी उपजे होने तो कह न कह यस सब चीज में हम जिम्मेदार छो किले की कुड़क करण को लाग रहो के डायबोर्ड कुड़ करनी कि जानवर कुड़ करनी हम करनो ने पन्नी भर भर बेर थैलों को भर भर बेर हमें तो खेड़नो। तो दगड़ियो यही संबंध में हमुल करी एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय छू कुड़क करुल कम तो स्वस्थ रोल हम। ये विषय में पहले हमार दगा बातचीत करण लाग रही अपन विचारों को साझा करण लाग रही श्रीमती ज्योति पांडे थाना बाजार अलमाड़ बटे। तो सब पहले तो अपनक आजक अंक में आपको स्वागत छू मैं। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
0: जस की हम बातचीत करण लाग रो की कुड़क कम करुल तो हम स्वस्थ रोल कभी तो सब पहले तो बड़े आपको ये बताओ की कुड़ कदू प्रकार को जो गंदगी को फैलू जो हमारे घर बटी निकलू।
1: दीदी कुड़ हमारा कम से कम तीन प्रकार का कुड़ हूँ जो एक जल और धरती में हूँ और जो वायु द्वारा हूँ और यह कुड़ ले हम लोग करने आए ये ईमेल है हमारी जिम्मेदारी छू। तो मैं सोचनु जो वायु वाल छू उमें जैसे हम पन्नी जलुनु या प्लास्टिक जलुनु यह वायु में फैल जाए ये धूं विल अनेक प्रकार नंतिन को और हमारे बुजुर्ग को अनेक टाइप स्वास्थ्य बीमारी या अनेक टाइप बीमारी होनी जो हम समझ नहीं सकन उन वाले भविष्य में हमारे बहुत खतरनाक साबित हूँ। और एक हूँ धरती में जो हम कुड़ करनु हम प्लास्टिक जलुनु वो आदू जलू लेकिन आदू जो छू वो धरती को खराब कर दू उमें ना पौधे उग सकन और जो पौधे उगनी उमे जो फल होनी जो अनाज हूँ वो थोड़ी हानिकारक हूँ। तो ये लीजिए मैं सोचनू की हमारे नन नन प्रयास द्वारा हम कई सफाई रख सकनू जैसे हम बाजार जानू सब्जी ली हूँ अगर वो आलू टमाटर प्याज लीजिए हम घर में एक थैल लीजून या झोल लीजून तो हम तो छू तो नन नन प्रयास लेकिन यह द्वारा हम कई चीज कर सकनू। और मैं अधिकतर महिलाओं हूँ यह बात चाहू क्योंकि कुनी ने नारी शक्ति ही सबने बैठू हूँ हम चाहनू तो मतलब महिला सब चीज कर सकनी चाहे वो समूह द्वारा किटी पार्टी द्वारा समूह द्वारा ले हम बैठ बैठ जैसे हम मीटिंग करनू उतनी हम थोड़ी साफ सफाई बारे में थोड़ी बात करबे

0: कसी हम आपको गली को साफ करूं, कसी हम आपको मोहल्ले को साफ करूं, घर को तो हम सब साफ करनो, चाहे हम नानदिन गंद करनी, हम आदि माहौल गंद करनी, लेकिन उससे हम ये सोचना चाहे हम आपको गली साफ करना छू, मोहल्ला साफ करना छू। तो ये लीजिए मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती करनू, जैसे हम कूड़ादान में कूड़ा फेंकनु, हम सोचू सबूल भैर बेखिता हो, हमले भैर बेखित भेज जानू, कम से कम कूड़ादाना भीते कूड़ा लानू, तो कम से कम जानवर फैलाल ना और के कुनी सफाई रोल हमारे।
1: जी बिल्कुल भल बात कह बोल और बट ठुल बात कह कि नारी शक्ति स्वभाव ठुल शक्ति चुके वाकई में। धरती के लिए माता कही जा, प्रकृति के लिए माता कही जा, और माता प्रकृति हमको कदू भाग चीज दे रही, शुद्ध हाव दे रहे, शुद्ध जल दे रहो, शुद्ध भोजन दे रहो, धरती माता मेले कदू सहनशीलता है और हमर भरण पोषण ले माँ धरती के द्वारा हूँ, और घर संचालन करने वाले एक माता है। देखो हम जैसे आप घर व्यवस्था के बढ़ो आप बात कहे बिल्कुल सही बात कहे कि जैसे हम अपन घर में व्यवस्था बनूल जब सब लोग उको मानल कभी वाकई में जो नंतिनु कमरू हूँ, नंतिनु कमरू में ले मैं हमको एक कूड़ादान धारण चाहे, नंतिनु हूँ ले या प्रेरित करण चाहे कि तुम जदूला कुड़कर छा ये कूड़ादान में खितो कभी। दूसरी बात ये बताओ कि मैंने आजकल जैसे हम गलियों में देख लू अपन घरों में देख लू हम के कहूँ की राति ब्याण उठो जब नाया धोयो साफ सुथरा लुगुर पहन क्रीम पाउडर लगाए अपन शरीर को खूब सजाए अब घर के लिए सजाए विभिन्न प्रकार सजावटी सामान हम आपको घर में लूनो और जैसे वो सामान थोड़ा खराब है किचन सामान हमारे रसोई सामान जरा खराब है हमारे फाटी फूटी के कपड़ा है जब हम उनको फिर इतना उतना खेड़ देनो थैलू में भर हम खेड़ दे। अब यह चीज में अपन के विचार छे जो हमारे रसोई सामान खराब है जहाँ उसको हम कैसे निस्तारण करो, जो हमारे फाटी फूटी लुकुड़ होनी हम उसको कैसे निस्तारण करो।
0: तुम बोलिए बहुत बड़ी बात पूछी कि रसोई में बहुत ज्यादा जो कूड़ कबाड़ हूँ या कोई चीज सड़ जाए कोई चीज गंदी है हम क्या कर सकूं। देखो मैं मेरे विचार तो ये छू पहले तो हम रोज खाना बनो जो उसमें प्याज टमाटर आलू छिकल होनी पहले तो हम उनको अलग अलग से रखू या उनको एक कोई चीज में गड्ढा बड़े वहां धर दू। माना जो शहरी क्षेत्र वाले छन उनको तो जाग नहीं होती लेकिन वो लोग ला कर सकनी अब वो गमला में डालबे जैसे चाह पत्ती छू या आलू छिकल छन वहीं खाद भर सके और जैसे फाटी कपड़े छन हमारे जो फाटी कपड़े होनी हम के करूँ उनको एकदम फेंक दू लेकिन मैं सोचता हूँ पहले उनको पोछा बढ़ाओ अगर थोड़ी ठीक छन उन्हें पायदान बढ़ाओ और नानते ना नान नानते ना तू कपड़े बढ़ जानी जैसे नान पैद हुई नानती छू लंगोट बढ़ कतु टाइप हम अगर यूज करना चाहते तो यूज करना तरीक बहुत लेकिन हमको थोड़ी सोचना पड़ो हम सोचो ना उको हम लून लेकिन ये तो सोचो उको हम भैर फेंकने वही कतु गंदगी होने के होने और जो हम कप धरा के आप हम कप धरनू कांच गिलास धरनू वो फूट जाए हम उको बंद कर बे पन्नी बंद कर नू डस्टबिन में डाल दू लेकिन वही के लिए कतु नुकसान छन उको हम डस्टबिन में डालू खाली पकड़ बे इसके खींच दू लेकिन मैं चाहनू की जो कांच फूटी छू और कप फूटी छू उको हम अलग से बंद कर बे जहाँ हम नगर पालिका वाले गाड़ी हूँ या नगर पालिका में अलग से डस्टबिन हूँ उको अलग से फेंकी जाओ सुख कुड़को अलग और गिर कुड़को अलग फेंकी जाओ तो मैं जो ले जानी छू वो आराम फेंक सको और आराम विचार कर सको कत्ती हम के कर सको जैसे जलूनी वाल को जला सको और जस गोरवासना खानी छू हम अलग से बढ़े एक गोरवासना भान बढ़े गोरवासना को खाए जस आब आम छिकल होनी वही बहुत गंदी फेंक हूँ बहुत गंदी बदबू हूँ और जस केला छिकल होनी और आलू छिकल होनी एक गोर खा सको जो चीज जानवर खा सको वो ये नहीं करो कि बास धरो वो तुरंत दियो गोर ले बीमार नहीं होना चाहिए जानवर ले एकदम बीमार हो उले हमारा हमारे जी खतरा छू उले हमारे जी परेशानी अघिल का होने पर लेकिन आज इतु गंदगी है हमारे अलमार में उमे लेकिन हम अगर अघिल बढ़ून अगर हम सब महिलाएं एक साथ करून हम सब महिलाएं समूह द्वारा विचार करून कि हम कैसे सही करना चाहू अपू मोहल्ला अपू गली जब अपू गली और मोहल्ला सही करूँ तब हमारा शहर भल हो सको।
1: हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये पहल हमको स्वयं करना पड़ेगा अगर हम अपने घर के साफ सुथरे धरनो राति बिहार अपन साफ सफाई करनो तो हमको ये लगे ध्यान देना पड़ेगा ना कि हमारे गली लगे साफ होगा भेर शुद्ध होगा भेर अगर हम अपने घर का अगिल बटी पन्नू ढेर नहीं लगू जब दूसरा आदमी कसी लगा थोड़ी बहुत जाग बच रहे जब उमे हम गमला धर सकन और जो व्यवस्था बन रहे जाग जाग जो कूड़ादान धर रहे उमे कूड़ का हमको खेतन चाहे। मैंने एक बात अब और भल बताए कि जो गुरु खानी चीज छू उको हमको अलग धरन चाहिए कभी। देखो इसमें मैं ये जान चाहू की कई लोग के करने की एक पन्नी में सब चीज के खेत देने ये मैं आपको के विचार छे कसी भी निस्तारण करने चाहिए।
0: मैं इमें यही कूड़ चाहू की जस गुरु खानी छू मानो आमा छिकल केला छिकल कोई टाइप का गुरु खानी छू सागर छिकल जो ले अलग से या एक भान में धरवे गोरहू धरना चाहे उमे डायपर या पैड इस टाइप का चीज या कांचा के इस टाइप का चीज नहीं खींचना चाहिए क्योंकि उले जानवर छू जरा साफ सुथरा कर दिला उले कुनी ना गौ माता सब ने बैठोल छू कम से कम उकोले गंदगी बचाओ और वो जो चीज छू के हूँ गोर खा पूरे रस्ते में फैला दू पूरी गली खराब कर दू पूरी सड़क खराब कर दू। ज्यादातर मैं महिलाओं हूँ यही चाहू की आप ज्यादा से ज्यादा इस विचार में सोचो विचारो अगर हम अब सफाई करूँ हम इस चीज में सोचू तब हमारे अगिल का नानतिन स्वस्थ रह सकनी लेकिन आज नानतिन बहुत बीमार होनी वही कारण हमारे यही छू की चारों तरफ गंदगी गंदगी छू लेकिन अब हम जा देखो वहाँ कूड़ा ढेर दिखनी वो मेरा हमारा गलती छू गोरु हिस्से गोरु को दे बे कपड़ा अलग से कर बे काचा टुकड़ो अलग से कर बे गिल और सुखी कुड़ को अलग धरना तो शायद मेरे को लागू हमारा मोहल्ला ठीक होला तो हमारा शहर ले।

0: भल हो जाए। मैं ये चीज ये ले जानू दीदी समय में कि जैसे हम हुनी ना कूड़ादान हुनी, कई लोग तो इसके कूड़ादान है भीतर कूड़ खिदना रहती, उको कूड़ा भैर पे धर दीनी, कूड़ा भैर पे खिद दीनी। वही बात की हूँ कोई गुरबा छूनी उको नोचनी, बानर होनी उको नोचनी, कुकुर बिरा होनी उको खाना लीजिए, सबन को खाना लीजिए, चाहे वो सोचती मैं खाना चाहू उको नोचती, लेकिन वो नोचने चक्कर में क्यों सर बाजार में फैला देनी, सर गली में फैला देनी, तो वही के हूँ सर गंदगी फैलते जाए। हम मनुष्य को हिटन में परेशानी है, जानवर को ले और ये बीमारी ले ज्यादा ज्यादा फैला। अगर
1: तो ये बात अब बिल्कुल ठीक है, ये हमको ध्यान धरण चाहे, मैं ये बात ध्यान धरूल कि अगर हम कूड़ादान में कूड़ खेतन छू तो अब वो हाथ को जरा लंब कर बे भी जाएगा खोलबे भी भीतर खेत दी। देखो मनुष्य को भगवान के बना रहो, एक समझदार मनखी बना रहो, और हम अपन समझदारी परिचय यही दिनों अपन गंदगी को फैलाबे।

0: मनुष्य को हिटन में परेशानी है, जानवर को ले और ये बीमारी ले ज्यादा ज्यादा फैले। अगर
1: तो ये बात अब बिल्कुल ठीक है, ये हमको ध्यान धरण चाहे, मैं ले ये बात ध्यान धरूल कि अगर हम कूड़ा दान में कूड़ खेतन छू तो अब वो हाथ को जरा लंब कर बेर भी जाएगा खोलबे भी भीतर खेत दी। देखो मनुष्य को भगवान के बन रहो, एक समझदार मनखी बन रहो और हम अपन समझदारी परिचय यही दिनू अपन गंदगी को फैलाबे। तो अगर हम सच्चे अर्थ में मनुष्य छू, हम अभी ते समझदारी छू तो हमको समझदारी परिचय दिन पड़ोल अपन स्वास्थ्य को बढ़नक लीजिए और अपने क्षेत्र को साफ स्वच्छ धरनक लीजिए। तो यह बात तो हम सबको ध्यान में धरना पड़े कि जाला कूड़ा दान छू वो कूड़ा दाना भीतर लंबा हाथ कर भेरा हम कूड़ के खेड़ू। अगर जो हम बात करनो आज हमारे विषय छू कि कूड़ के करो कम तो स्वस्थ रूल हम, यह विषय में अब आगे हमारे दगे एक बहन और जुड़ गई जना नाम छू श्रीमती बीना पांडे। मैंने आप स्वागत करनो हमारे कार्यक्रम एपड़क आज अंक में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: जिसकी अला हम बात करी या बहन श्रीमती ज्योति पांडे दगे इन अपन विचार हमारे दगे साझा करी तो आगे इसके अपन के विचार छिन के लिए हम ग्रहणी छिन तो एक ग्रहणी होने नाते अपन घर कूड़ को कसी कम करो ये मैं आपू के विचार छिन।
2: जिसकी मैं कौन जानू कि अल्मोड़ा हमारे एक सांस्कृतिक नगरी छू और यहाँ पर्यटक लोग उन्हीं जानी तो यह हमारे मन की अपन जिम्मेदारी समझ भी काम करन छे कि हम लोग उनके केवल सरकारी तंत्र पे आश्रित नहीं होन छे, हम इनके खुदे सफाई करन छे कि कूड़ के हम कसी सफाई करूँ और जिम्मेदारी जिसकी हम अपन ध्यान रखनू नानू धोनू लुकुड़ बदलनू और चीज करनू उसी हम अपन अगल बटी साफ सफाई रख सकनू। लीजिए हम चाहनू कि हम कुड़ाक लीजिए दो डाब धरनू घर में, एक में सूख कूड़ धरनू एक में गिल रखनू जल लीजिए हम सफाई रख सकनू और अपूर्ण जो हमार कूड़ हूँ उके मली बटी तली खिंचनू और पे जो हमार रोड और हमार रास्ता छू वो हमार साफ रह सकू।
1: बड़ी जिसकी एल हम बात करने लग रहो और हमार बात हमार रेडियो श्रोताले एल सुनने लग रही तो ये कूड़ा हमार कम होने लीजिए। जैसे कि हम महिला छिन हम घर में सबको प्रेरित करनू तो क्या अब विचारे में साझा कर ला कि हम नंतिनू को यह लीजिए कैसे प्रेरित करू कभी।
2: हम नंतिन के ये कुन जानू कि अगर नंतिन की कमर में एक डाब धर दिन वहाँ वो कूड़ इकट्ठा कर सकें तो जो कूड़ हमारे घर में फैल रहे वो नहीं फैलन वो डब में धर दे और ये लीजिए हमारे जो नंतिन छन बोले जागरूक भूल की हाँ यो कूड़ के हम कसी धरूल कसी रखूल तो बोले प्रेरित हो सके किले की वो हमारे आने वाले भविष्य छन तो वो अगर प्रेरित हो तो अपन आगे वाले के बता सकनी।
1: जब हम आपको कूड़ के खेलना तो हम नंतिन होला कह सकनो कि बेटा तुम ला कूड़ादान को उठाओ और गाड़ी में खेलो और इथा उथा नहीं खेलो।
2: हाँ बिल्कुल आप ठीक कुन छ, हम अपने नंतिन के लिए प्रेरित करनी कि तुम जा जो ना छा या कूड़ जो छो अगर तुमको डस्टबिन नहीं मिलन तो अब वो बैग में घर पे रखा और फिर घर में जो हमारा डस्टबिन बनो तो उमे खे दिया और जब हम समूह में जानू तो तबले हम उनको बतानू कि तुम अपू नंतिन के लिए प्रेरित करिया कि कूड़ डब में धरिया का फिर।
1: बिल्कुल सही बात कहे मैंने अबुल और आप दियो बनियाल अबुदियो अपन विचार हमारे दगा साझा करी और कसी कूड़ कम करी जो कसी यह निस्तारण करी जो और के हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कभी यह बार में अपन विचार साझा कर बेर हमको बता और जरूर हमारे श्रोता ले यह प्रेरित हल कि कसी हम कूड़ के कम करू और कसी हम स्वस्थ रू कभी किले की यह हमारी जिम्मेदारी छू। जब हम अपन जिम्मेदारी के भली भान नहीं भूलो जब तो दूसरे हमें कसी पहल करल जैसे कि हम अपू को स्वच्छ धरनू अपू घर के साफ स्वच्छ करनू अपू घर के सजूनू उसी का अपन गाँव मोहल्ला बाके के सजूने के लिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हर मन की अपनी जिम्मेदारी को समझल तो जरूर हमारे कूड़ कम हल और हम स्वस्थ रू। आप दियो बेणियाल जो अपन कीमती वक्त हमको दे अगली जी अपन कार्यक्रम तरब है आप दिनों का खूब खूब धन्यवाद। दगड़ियो अला हमल सुनी या क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय छी कूड़ करूल कम तो स्वस्थ रूल हम, ये विषय में हमारे दगा बातचीत करने लग रहा छी श्रीमती ज्योति पांडे थाना बाजार अलमाड़ बटी श्रीमती बीना पांडे अलमाड़ बटी।
3: दगड़ियो अब कार्यक्रम में अगल बात करनू गैर संचारी रोगक अंतर्गत आज हम बात करो अस्थि संध्यावर्ती रोगक बार में जक अंग्रेजी में मस्कुलो स्केलेटस डिसऑर्डर ले कही जा जिसके गठिया ये एक प्रमुख गैर संचारी रोग छू। यह एक व्यक्ति भटी दुहर में नहीं फैलन बल्कि बढ़ती उम्र खराब हमार जीवन शैली और आनुवंशिक कारणन हो जो कि मुख्य रूपल जोड़ों और हड्डियों को नुकसान पहुँचो। दगड़ी यह जो हम बात करनो अस्थि संध्यावर्ती रोगक जो कि गठिया छू यह कई प्रकारों को जिसकी एक प्रकार ऑस्टियो आर्थराइटिस यह एक आम प्रकार हो जो उम्र बढ़ने दगड़ दगड़े कई जानिया का है जा यह मैं यस हूँ कि जोड़ों सिरों में जो मौजूद सुरक्षात्मक उपास्थि हैं वो बखतक दगड़ दगड़े घसी जाए जय कारण जोड़ों में पीड़ हो भजे। एक हूँ रूमेटाइड आर्थराइटिस यह एक ऑटो इम्यून स्वप्रतिरक्षित बीमारी छो जब मैं यस हूँ कि हमारे

रोग प्रतिरोधी क्षमता खुद हमारा शरीरक जोड़ों को प्रभावित कर दें और जोड़ों में पीड़ हूँ फजे। एक हूँ गाउट, जिमें यह सूंगी खून में यूरिक एसिडक स्तर बढ़ जा, जय कारण जोड़ों में क्रिस्टल जम जा, जय जोड़ों में तेज दर्द और सूजन जैसे जाए। देखिए अब हम सोचू हनल की यह सब कसी खून हनल। एक तो छू बढ़ती उम्र, जमे की जोड़ और हड्डियों प्राकृतिक रूपल आपसे आप क्षमता कम हो जाए और मोटापा ले यह कारण छो। शारीरिक अनावश्यक वजनल हमारे जोड़ों में अत्यधिक व अनावश्यक दबाव पड़नल ले यह सह सकूँ और शारीरिक निष्क्रियता बैठिया बैठिया रूणल मांसपेशी कमजोर हो जानी और जोड़ कठोर हो जानी। कभी कभी जोड़ों में लगी चोट ले यह समस्या का बढ़ दू। लेकिन बखत पर यह एक बचावक उपाय तो हम करी सकनू, जैसे कि संतुलित भोजन कर भेर, अपन वजन पर नियंत्रण कर सकनू, जय जोड़ों में दबाव कम पड़ल और नियमित योग व्यायाम करण ले यह मैं लाभदारी छू। और जो खान पान छू उमें कैल्शियम विटामिन डी ओमेगा थ्री यह भरपूर हूं चे। देखिए अपन खान पान रहन सहन और आदत व्यवहार और शारीरिक व्यायाम कर भेर सदा सकारात्मक और प्रसन्न रह भेर आपू को स्वस्थ और मस्त कर सकूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त। 1 जुलाई से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री व वितरण पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाफल सुधार परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। जुलाई से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 जारी। अब तक 13,55,948 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है और अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण USMEA कल से अस्तित्व में आ जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: निकाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने और विनियमित करने का कार्य करेगा और प्रदेश के सभी 452 मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी है। यह मान्यता 3 शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगी। इसके अलावा मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी और प्राधिकरण मदरसों का भौतिक निरीक्षण करेगा। मदरसों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करना होगा। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बीते 14 मई को मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान संबंधी मान्यता नियमावली 2026 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मदरसा बोर्ड के स्थान पर 1 जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। नई नियमावली से शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। आकाशवाणी देहरादून के समाचार कक्ष से योशिता पांडे।
3: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 13 विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा। इससे खुदरा और थोक उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतों में बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए 12 जून से अस्थायी नियामक उपाय लागू किए गए थे। इनके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल देने की सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। इन उपायों का उद्देश्य डीजल की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध बिक्री को रोकना तथा आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन एवं समर्पण के अंतर्गत 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान धामी सरकार पिछले 5 साल के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभ देने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। सरकार की ओर से गत वर्ष 17 दिसंबर से राज्य भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब इसकी अगली कड़ी यानी दूसरे चरण में 4 जुलाई से सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी जिलाधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के दौरान जिलों में प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में व्यापक जनभागीदारी के साथ कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है।

0: इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। आगामी वर्ष 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति और संत समाज की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की।
1: आज सभी पूजनीय संत और महंत गुरुजनों के साथ बैठक हुई और जो कुंभ मेला होने जा रहा है वो भव्य हो, वो दिव्य हो, ऐतिहासिक हो, जिसका पूरे भारतवर्ष में और पूरे देश में विश्व में एक अच्छा संदेश जाए, उसी उद्देश्य से आज यहाँ पर सभी महंत सभी संत और महंतों को यहाँ पर आमंत्रित किया था, उनके साथ बैठक हुई। लगभग सभी अखाड़ों से हमारे संत और महंत यहाँ पर पहुंचे थे और माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इस बार का कुंभ ऐतिहासिक होगा और दिव्य होगा, भव्य होगा। इसी दिशा में आज बैठक का आयोजन किया गया था, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है।
0: बैठक में विभिन्न अखाड़ों के संतों ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव दिए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाफल सुधार परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आगामी 22 जुलाई से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत छात्र न सिर्फ अंक सुधार करेंगे बल्कि इस परीक्षा के माध्यम से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण होने का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि परीक्षा वर्ष 2026 प्रथम और वर्ष 2025 तृतीय की परीक्षाएं 22 जुलाई से शुरू होंगी जो 29 जुलाई तक चलेंगी। 22 जुलाई को पहले दिन हाई स्कूल की हिंदी एवं इंटरमीडिएट की हिंदी, कृषि, अंग्रेजी व संस्कृत की परीक्षा होगी। 23 जुलाई को हाई स्कूल की उर्दू व अंग्रेजी, इंटरमीडिएट की इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र व सैन्य विज्ञानी परीक्षा होंगी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 13,76,813 मतदाताओं में से 13,55,948 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 10,98,179 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 1,42,485 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन शेष है। जिले में वर्तमान में केवल 1,36,149 मतदाता ऐसे हैं जिनसे गणना प्रपत्र प्राप्त होना शेष है। देहरादून स्थित जिला कार्यालय में ऋषिपर्णा सभागार में डॉक्टर चौहान के अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, प्रतिनिधियों तथा सचिवों के साथ आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा की है कि वे अपने अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कराने एवं समयबद्ध रूप से जमा कराने में सक्रिय सहयोग करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक कनिष्ठ अभियंता को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सतर्कता अधिष्ठान की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार एक पंजीकृत ठेकेदार ने टोल फ्री हेल्पलाइन 1064 पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि ब्लॉक जसपुर में वाटर कूलर लगाने के कार्य के भुगतान के एवज में कनिष्ठ अभियंता विवेक कुमार ने 20,000 रुपए तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीपक सागर ने 12,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। सतर्कता निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने आम जनता से भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9456592300 पर देकर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सहयोग करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में

0: मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त। 1 जुलाई से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री व वितरण पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। 22 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 जारी। अब तक 13,55,948 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं इब्ने इंशा की गजल से आवाज जगजीत सिंह की।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला
1: विमलेश जी?

0: इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रही, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,

0: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
1: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
1: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
1: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
1: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
2: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, न होंगे बेहाल। खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, न होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
5: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए, यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
4: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो, यही करो।
3: खोदेंगे

0: अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
1: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन, कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
5: क्या
6: क्या
5: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
5: कू कू।
3: नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
1: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू,
6: हईशा।
4: दम लगा के कू,
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम। ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
8: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
1: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: इसकी यही सजा हो।
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
5: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है, रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो
3: पिए दूजा पानी। कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी।

0: ना जाए, बिन बारिश बिन पानी, बिन बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।
3: पानी,

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1317 अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत। गायिका हैं ज्योति पांडे।

उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: में लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हार कर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार, दिल्ली।

0: सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1,021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1,021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में

0: खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण

0: और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में नट फसलों की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरुण किशोर।
3: उत्तराखंड में नट फलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं और ये फल प्रमुखता से कुमाऊं व गढ़वाल के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकते हैं। नट फल वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज व विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र के नट फलों में प्रमुखता से अखरोट, भोटिया बादाम यानी हेजलनट, चेस्टनट व पीकन नट आते हैं, जिनकी खेती भारत के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में की जाती है। विगत कुछ दशकों में उत्तराखंड के किसानों का नट फलों की खेती की तरफ आकर्षण बढ़ा है, क्योंकि सेब व अन्य शीतोष्ण फलों की खेती में अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में नट फलों की व्यावसायिक खेती से कई किसान काफी लाभान्वित हुए हैं। नट फलों में विशेष स्थान अखरोट का है, जो कि जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से उगाया जाता है और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी कुछ वर्षों से इसकी व्यावसायिक खेती प्रारंभ हुई है। इसका वैज्ञानिक नाम जुगलेंस रेजिया है और इसकी उत्पत्ति ईरान व उसके आसपास के क्षेत्रों में मानी जाती है। अखरोट की गिरी प्रोटीन, वसा व खनिज का प्रमुख स्रोत माना जाता है और अन्य गिरीदार फलों की अपेक्षा इसमें विटामिन B6 व ओमेगा-3 फैटी एसिड अधिक पाया जाता है, जो कि हृदय के लिए अच्छा माना जाता है। अखरोट की खेती समुद्र तल से 1200 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए गहरी

दोमट मिट्टी व जल निकास की सुविधा वाली मृदा सबसे उत्तम मानी जाती है। अखरोट की प्रमुख किस्में विदेशों से आयातित हैं, जबकि हमारे देश में ज्यादातर बीजू पौधे ही पाए जाते हैं। कुछ किस्में केंद्रीय शीतोष्ण बागवान अनुसंधान संस्थान कश्मीर से चयनित की गई हैं, जो कि पतले छिलके व अधिक नटभार वाली होती हैं, जैसे कि शेर, हर्टल, फ्रैंक्वेट, टेहमा, पेड्रो व CITH वालनट 1, 2, 3, 7, 8 एवं 10। हेजलनट यानी भोटिया बादाम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विदेश से लाई गई गिरीदार फसल है और इसका उत्पादन बहुत ही कम क्षेत्रों में होता है, जबकि इसकी खेती की उत्तराखंड में बहुत संभावनाएं हैं। हाल ही में इसकी कुछ संवर्धित प्रजातियां यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में लाई गई हैं, जिनका उपज के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन है। भोटिया बादाम का वैज्ञानिक नाम कोरिलस एविलाना है और इसकी खेती पर्वतीय क्षेत्रों के 1800 से 3300 मीटर समुद्र तल तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है। साथ ही साथ इसकी खेती के लिए उपजाऊ गहरी दोमट मिट्टी अच्छे जल निकास के साथ उपयुक्त मानी जाती है। इसकी प्रमुख किस्में डेवियाना रोमिस, जिलर, लैम्बर्ट, फिल्बर्ट, टोंडा, गिफोनी हैं। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में चेस्टनट का उत्पादन बहुत ही कम होता है, क्योंकि यह अभी भी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में बिखरे हुए मिलते हैं और इसकी व्यावसायिक खेती अभी प्रारंभ नहीं हुई है। चेस्टनट मुख्यतः खनिज व कार्बोहाइड्रेट का संपन्न स्रोत माना जाता है और इसमें स्टार्च कम मात्रा में व डेक्सट्रोज तथा अन्य घुलनशील कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी खेती समुद्र तल से 1500 मीटर से ऊपर सफलतापूर्वक की जा सकती है और इसकी खेती के लिए विभिन्न प्रकार के मृदा व जिनमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो उनमें की जा सकती है। इसका वैज्ञानिक नाम कैस्टेनिया सेटाइवा है। नैनकिन, मिलिंग, हेमिंग, क्रैन व ओरिन इसकी प्रमुख किस्में हैं। पीकननट सर्वोत्तम स्वाद एवं अच्छे गुणों के कारण गिरिदार फलों में इसका अपना अलग स्थान है और इसे प्रायः गिरिदार फलों की रानी भी कहा जाता है। पीकननट के गिरी वसा, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट व विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं। इसकी गिरी प्रायः मीठी होती है। इसका उपयोग नमक या भूनकर सामान्य खाने के साथ किया जाता है। इसकी खेती समुद्र तल से 800 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक की जा सकती है और अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल आदि जिलों में व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है। इसका वैज्ञानिक नाम कारिया इलियानेंसिस है। नेलिस, महान, बर्केट, सक्सेस, पावनी व मोरलैंड इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। नट फलों में पौध प्रवर्धन व्यावसायिक रूप से कलम बंधन एवं कलिकायन विधि से होता है और इनमें कलम बंधन एवं कलिकायन मुख्य रूप से बीजू मूल वृंत पर किया जाता है। पौध प्रबंधन के लिए बीजों की बुआई दिसंबर माह में 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर कर दी जाती है, जबकि इनके अंकुरण के लिए द्रुत सीलन समय या चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है, जो कि अलग अलग गिरिदार फलों के लिए अलग अलग होती है। परंतु बीजों की बुआई अगर दिसंबर माह में की जाए तो उनकी द्रुत सीलन आवश्यकता मिट्टी में ही पूरी हो जाती है और बीज मार्च से अप्रैल माह में अंकुरित हो जाते हैं। फिर इन पौधों को कलम बंधन विधि से दिसंबर से फरवरी व कलिकायन विधि में सितंबर माह में प्रवर्धित किया जाता है। गिरिदार फलों के प्रवर्धन के लिए प्रमुख विधियां टंग ग्रैफ्टिंग एवं चिप बडिंग हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः सीढ़ीदार खेतों में इनका रोपण होता है, इसलिए रेखांकन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अखरोट के पौध रोपण के लिए पौध से पौध की दूरी 6.5 मीटर व क्यारी से क्यारी की दूरी 6.5 मीटर रखते हैं। वहीं भोटिया नट यानी हेजल नट के लिए पौध से पौध की दूरी 6 मीटर व क्यारी से क्यारी की दूरी 6 मीटर। चेस्ट नट में पौध से पौध की दूरी 8 मीटर व क्यारी से क्यारी की दूरी 8 मीटर व पीकन नट में पौध से पौध की दूरी 8 मीटर व क्यारी से क्यारी की दूरी 8 मीटर रखते हैं। नट फलों में सधाई प्रमुख रूप से एकल शीर्ष प्रणाली यानी सेंट्रल लीडर सिस्टम से की जाती है। गिरिदार फलों

0: में अन्य शीतोष्ण फलों की तुलना में कम संधाई एवं कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें फल मुख्यतः शाखाओं के शीर्ष पर लगते हैं। यदि कोई तना या टहनी अस्वस्थ हो तो ही उनका दिसंबर से फरवरी के बीच में कटाई छटाई की जाती है। नट या गिरिदार फलों में पुष्पन व फलन 4 से 6 वर्षों के उपरांत होता है। नट फलों में नर एवं मादा पुष्प एक ही पेड़ पर अलग अलग लगते हैं, जिसे उभयलिंगी प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें परागण मुख्यतः हवा के द्वारा होता है, जिसके कारण इनके बगीचों में मधुमक्खियों के बक्से की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नट फलों के पौधे की जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, जिससे ये खनिज पोषक तत्वों को सामान्यतया मृदा से ही ग्रहण कर लेती हैं। परंतु यदि मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो तो अलग से मृदा को उर्वरक दिया जाता है, जैसे कि नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश। इसके लिए गोबर की खाद, फास्फोरस व पोटाश पौधे की जड़ों में दिसंबर से जनवरी में दिया जाता है, जबकि नत्रजन की आधी मात्रा फूल आने से पहले व बची आधी मात्रा फूल आने के 1 महीने बाद दिया जाता है। गिरिदार फलों में 1 साल के पौधे को 5 केजी गोबर की खाद, 55 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 40 ग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटास दिया जाता है, और प्रत्येक वर्ष यह मात्रा बढ़ाकर दी जाती है जब तक कि पौधा 10 वर्ष का नहीं हो जाए। इस तरह से 10 वर्ष के पौधे को 50 किलो गोबर की खाद, 550 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 400 ग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटास दिया जाता है। ठीक समय पर नट की तुड़ाई एवं साथ साथ उनकी देखरेख एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर तुड़ाई में किसी प्रकार की देरी हो जाए तो गिरी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। प्रायः गिरिदार फलों में तुड़ाई बांस के डंडों से की जाती है। अखरोट में फलों की तुड़ाई तब की जाती है जब 80% अखरोट के फल फट जाते हैं। वहीं व्यावसायिक स्तर पर 200 से 500 ppm इथेफान का छिड़काव तुड़ाई से 10 दिन पहले किया जाता है, और इनके भंडारण के लिए गिरी को 5 से 8% नमी के साथ संरक्षित रखा जाता है। अखरोट के 8 से 10 साल के पौधे व्यावसायिक उपज देने लगते हैं, और इस अवस्था में एक पौधा 12 से 18 किलो तक नट देता है। वहीं हेजलनट यानी भोटिया बादाम 3 से 4 केजी, चेस्टनट 15 केजी व पीकन नट 20 केजी प्रति पौधा उपज देते हैं। इस प्रकार से यदि बागवान भाई नट फलों की बागवानी करें तो उन्हें अन्य शीतोष्ण फलों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होंगे।
1: पर्वतीय क्षेत्रों में नट फसलों की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर डॉक्टर अरुण किशोर से खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोता अभी सुन रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा, और रात 10 बजे खेल पत्रिका कार्यक्रम खेल दर्पण लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:05 पर शैलस्वर में आज कलाकार होंगे गिरीश सिंह बोरा। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा अपडेट रहें, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। व्यक्ति विशेष में जानिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में, और आज का इतिहास भी युवा साथी सुन सकेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे दादा भाई नौरोजी पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत प्रसारित होगा, जिसमें आज सुनिएगा शर्मा बंधु और लखबीर सिंह लखा के गाए भजन। संध्या 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे, जिसमें आज की बातें होंगी जैविक खेती को बढ़ावा विषय पर। इसके अलावा खेती बचाओ अभियान के तहत सुनिएगा

खाद्य तेल मिशन पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम में चर्चा आप सुनेंगे विकसित खेती के लिए प्रौद्योगिकी नवोन्मेषी नवाचार। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन, इस विषय पर डॉक्टर कंचनारिया से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में। आज रात 9:30 पर श्रोता सुनेंगे गजलों का साप्ताहिक फरमाइशी प्रोग्राम महफिल। इसके अलावा सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात 8:00। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के बहुआयामी कलाकारों का जब भी जिक्र होता है तो विशाल भारद्वाज जैसे सुप्रसिद्ध कलाकार को जरूर याद किया जाता है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पार्श्व गायक, संगीतकार, लेखक, निर्देशक, निर्माता के रूप में वो बॉलीवुड में जाने जाते हैं। एक से बढ़कर एक चर्चित फिल्में उन्होंने दी हैं और उतना ही खास संगीत भी उनकी फिल्मों में समाया रहता है। तो आप समझ गए, एक ही फनकार के फनकार आज हैं विशाल भारद्वाज।

पुरुषोत्तम 4 अगस्त 1965 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ। और कम लोग जानते हैं कि विशाल भारद्वाज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते थे। वो क्रिकेट के इतने दीवाने थे कि उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम के लिए वो क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान अंगूठे की चोट ने उनके क्रिकेट करियर पर विराम लगा दिया। क्योंकि अगर आप देखें सोचें तो उनका इंतज़ार तो एक नई दुनिया में हो रहा था जहां वो बुलंदियों को छूने वाले थे। जब वो 17 साल के थे उस समय एक गीत उन्होंने बनाया और उनके पिता ने ये गीत संगीतकार उषा खन्ना जी को सुनाया। ये गीत साल 1985 में प्रदर्शित फिल्म यार कसम में इसका प्रयोग किया गया और इसी गाने ने उनके फिल्मी सफ़र की यूं तो नींव रखी। और विशाल भारद्वाज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अगर हम कहें तो उन्होंने की साल 1995 में फिल्म अभय द फेयरलेस से। बतौर संगीतकार एक तरह से स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर उन्होंने शुरुआत की। लेकिन पहचान की अगर हम बात करें तो उन्हें जाने माने निर्देशक गुलजार की फिल्म माचिस से उन्हें पहचान मिली। और इस फिल्म के लिए इस फिल्म में जो उन्होंने बेहतरीन संगीत दिया उसके लिए उन्हें बतौर संगीतकार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।

प्रोदो माचिस के बाद सत्या और गॉड मदर इश्किया जैसी फिल्मों में उनके बेहतरीन संगीत के ज़रिए वो मशहूर हो गए, और गॉड मदर के लिए उन्हें बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। विशाल भारद्वाज ने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया और बेहतरीन संगीत भी दिया, जिनमें मकबूल, सात खून माफ, द ब्लू अम्ब्रेला, हैदर और कमीने जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने निर्माण किया, निर्देशन दिया और संगीत भी। सत्या फिल्म में उनका कमाल का संगीत जब भी सुनिए तो आनंदित हो जाते हैं।

श्रोता भी सुन रहे थे, एक ही फनकार और आज के फनकार थे जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, संगीतकार और पार्श्व गायक विशाल भारद्वाज। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3, लेकर हम आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सदाबहार फिल्मी गीत प्रोग्राम में। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनके संगीत से सजे गीत सदाबहार बन गए। दौर कोई भी हो, इन सुरीले संगीत से महकते सजे गीतों ने हर पीढ़ी को तरंगित किया है। ये गाने दर्शकों के, श्रोताओं के दिलों में बसते हैं, हर पीढ़ी की जुबान पर छाए रहते हैं। ऐसे ही सुरों के सरताज जोड़ी, जिनको हम फिल्मी दुनिया में कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के रूप में जानते हैं, इन दोनों ही ने संगीत को बुलंदियों तक पहुंचाया और जाने गए महान जाने माने मशहूर संगीतकार जोड़ी के रूप में कल्याण जी आनंद जी। ये जोड़ी एक दूसरे के बिना पर्याय अधूरी है, एक दूसरे के पर्याय हैं और एक के बिना दूसरा नाम अधूरा है। श्रोताओं, इन्हीं सफलतम संगीतकार जोड़ी में से एक कल्याण जी वीर जी शाह की आज जन्म जयंती है, तो उन्हें हम श्रद्धा नमन करते हैं और आज इस जोड़ी यानी कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजे बेहद सुरीले तराने मिलकर गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, क्योंकि इस जोड़ी के बेमिसाल संगीत से सजे गाने सारे शहर में या सारी फिल्म इंडस्ट्री में जुदा हैं, अपने आप में खास हैं।

तो श्रोताओं, 30 जून 1928 को गुजरात के कच्छ में कुंडरोड़ी नामक स्थान में जन्म हुआ कल्याण जी का। और आनंद जी का जन्म 2 मार्च 1933 को हुआ। कल्याण जी आनंद जी के बड़े भाई हैं। और फिल्मों में आने से पहले कल्याण जी और आनंद जी अपने पिता की किराने की दुकान पर बैठा करते थे। वो दुकान के कामों में उनकी मदद करते थे। और किस्सा बड़ा दिलचस्प है। उनके पिता की दुकान से एक व्यक्ति सामान लिया करते थे, लेकिन वो किसी वजह से उधार के पैसे चुका नहीं पा रहे थे। जब उनके पिता वीरजी शाह ने रुपए देने के लिए कहा, तो उस व्यक्ति ने वीरजी शाह से कहा कि वो पैसों के बदले उनके बेटों को म्यूज़िक की शिक्षा दे सकते हैं। उनके पिता इस बात पर राज़ी हो गए। इसके बाद उस व्यक्ति ने उन दोनों को, यानी दोनों बेटों को, संगीत में पारंगत किया। और संगीत की शिक्षा लेने के बाद कल्याण जी ने अपने भाई आनंद जी के साथ कल्याण जी वीरजी एंड पार्टी के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा बनाया। इसके बाद दोनों भाई शहर से बाहर भी प्रोग्राम किया करते थे।

तो श्रोताओं, कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और साल 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के

श्रोताओं, कल्याण जी ने कल्याण जी वीर जी के नाम से अपना ऑर्केस्ट्रा ग्रुप शुरू किया और मुंबई और उसके बाहर अपने संगीत शो आयोजित वो करने लगे। इसी दौरान वो कई संगीतकारों के संपर्क में आए और शुरू में कल्याण जी ने कल्याण जी वीर जी शाह के नाम से फिल्मों में संगीत देना शुरू किया और सम्राट चंद्रगुप्त, जो कि साल 1959 में प्रदर्शित हुई ये फिल्म जब आई तो इस फिल्म का संगीत जो था वो कल्याण जी वीर जी शाह ने दिया। इसी नाम से उन्होंने शुरुआत की।

और इसके बाद इसी साल आनंद जी भी कल्याण जी के साथ जुड़ गए और उनकी जोड़ी बन गई कल्याण जी आनंद जी के नाम से। और ये अमर संगीतकार जोड़ी के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में छा गई। कल्याण जी आनंद जी ने साल 1959 में ही फिल्म सट्टा बाजार और मदारी फिल्म का बेमिसाल संगीत दिया।

श्रुतो, उसके बाद साल 1961 में फिल्म आई छलिया, और इस फिल्म की कामयाबी से बतौर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी बेहद मशहूर हो गई। छलिया फिल्म में उनके संगीत से सजे सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जिनमें छलिया मेरा नाम या फिर ये गाना जो आप सुनेंगे तो खुद ही याद करेंगे कितना खूबसूरत गीत है। और आजकल बारिश के मौसम में तो ये गाना और भी दिल को छू जाता है।

जी हाँ, सुभान अल्लाह कहेंगे इनके गानों को सुनकर। कल्याण जी आनंद जी ने ऐसे गानों को अपने संगीत से सजाया जिन्हें सुनकर हम बस वाह भाई वाह ही कह सकते हैं, है ना। और 1965 में श्रोताओं एक और बेहद खूबसूरत फिल्म आई हिमालय की गोद में, और इस फिल्म की सफलता जहाँ बुलंदियों पर पहुँची, वहीं कल्याण जी आनंद जी के संगीत की जो बुलंदियाँ थी वो भी शिखर पर जा पहुँची। और इस फिल्म का संगीत आज भी बहुत ही दिल को छू जाता है, जैसे कि ये गाना।

तो श्रोताओं, अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में उनकी जोड़ी निर्माता निर्देशक मनोज कुमार के साथ खूब जमी। मनोज कुमार ने सबसे पहले इस संगीतकार जोड़ी से फिल्म उपकार के लिए संगीत देने की पेशकश की। इस फिल्म में यूं तो सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इंदीवर का लिखा गाना कस्मे वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या, इस गीत के लिए जो संगीत दिया वो इतना बेमिसाल रहा, कमाल रहा कि कल्याण जी आनंद जी ने श्रोताओं को अपने इस गीत के बेहतरीन संगीत के जरिए भाव विभोर कर दिया। और जब भी आप इस गीत को सुनते हैं तो एक अलग ही एहसास से भर जाते हैं।

मनोज कुमार निर्देशित एक और फिल्म आई पूरब और पश्चिम। इस फिल्म के लिए भी कल्याण जी आनंद जी ने बेमिसाल संगीत दिया। दुल्हन चली वो पहन चली तीन रंग की चोली हो, या भारत का रहने वाला हो, या कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे जैसे सदाबहार गीत को संगीत ऐसा दिया कि एक अलग ही समा बांध दिया। देशभक्ति की बात हो तो ये गीत दिल को छू जाते हैं।

देश की बात हो या फिर रिश्ते नातों की बात हो, कल्याण जी आनंद जी का बेमिसाल संगीत हर दर्शक के दिलों तक पहुंचा, दिलों को छू गया।

याद कीजिए फिल्म सच्चा झूठा। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी ये फिल्म के लिए भी कल्याण जी आनंद जी ने ही बेमिसाल संगीत दिया और शादी विवाह के मौके पर बहनिया के लिए ये गाना जब भी सुना जाता है आंखें नम हो जाती हैं।

श्रोताओं, साल 1970 में विजयानंद निर्देशित फिल्म जॉनी मेरा नाम फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोमानी गीतों को संगीत से सवारा कल्याण जी, आनंद जी ने और श्रोताओं का, दर्शकों का दिल जीत लिया।

आखिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

धर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

श्रोताओं, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, सुहागरात फिल्म का गाना हो, हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को हो, सरस्वती चंद फिल्म से, पूरब और पश्चिम कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे जैसे गाने आपने मुकेश जी की आवाज़ में ज़रूर सुने होंगे, और इन सभी गीतों को मुकेश के सदाबहार दर्द भरे नगमों में शामिल किया जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि मुकेश जी ने सबसे ज़्यादा गाने शंकर जयकिशन के साथ गाए, पर उनके साथ उन्होंने जो गाने गाए वो ज़्यादातर राज कपूर के लिए थे, लेकिन कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल अलग अलग अभिनेताओं के लिए किया, चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो, फिरोज खान, मनोज कुमार या कोई और उभरता सितारा।

कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी को साल 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 1974 में प्रदर्शित फिल्म कोरा कागज़ के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्याण जी आनंद जी ने अपने सिने करियर में लगभग 250 फिल्मों में संगीत दिया और 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। लगभग 4 दशक तक अपने जादुई संगीत से श्रोताओं को भाव विभोर करने वाले कल्याण जी 24 अगस्त 2000 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन कहते हैं ना कि कलाकार कभी मरता नहीं, उनकी रचनाएं हमेशा इन फिजाओं में गूंजती रहेंगी।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में UPI के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने UPI की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर

0: सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शैलस्वर कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गिरीश सिंह बोरा का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं आप सुन रहे थे शैलथोर कार्यक्रम में गिरीश सिंह बोरा का गाया कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। खेल दर्पण आज रात्रि 10 बजे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सायं 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ये वो वाणी। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा सायं 5:45। भक्ति संगीत कार्यक्रम में सायं 6:41 पर कलाकार होंगे लखबीर सिंह लखा साथी और शर्मा बंधु। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी आज सायं 7 बजे, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सरकार के 12 वर्ष वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन विषय पर डॉक्टर कंचन आर्या से की गई भेंटवार्ता। फिल्म संगीत आप सुनेंगे आज सायं 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। महफिल फरमाइशी गजलों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। और शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे आज रात्रि 10:30 पर। हमारी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु, तत्पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातः 7:10 पर श्री रामचरित मानस गान और प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में कलाकार होंगे गिरीश सिंह बरगली और विमला बोरा। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 8:30 पर। फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम की निर्धार आप सुनेंगे कल रात प्रातः 9:05 पर। सबरंग कार्यक्रम में कल प्रातः 10:05 पर कलाकार होंगे गुलाम अली, नुसरत फतेह अली खान और मेहंदी हसन।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 11 बजे। लोकसुर ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 11:30 पर। मेरी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर संसार कल दोपहर 12:30 पर। सुगम संगीत में कल दोपहर 1:15 पर कलाकार होंगे पंकज उदास, गुलाम अली, हंसराज हंस और सोनू निगम। एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1318वीं कड़ी हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे कल दोपहर 2 बजे। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती की बातें कल दोपहर 2:30 पर। एक ही फनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 2:45 पर। और सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे कल अपराह्न 3 बजे। हमारी सायंकालीन सभा में कल सायं 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में कलाकार होंगे प्रहलाद सिंह मेहरा। युवा साथियों कार्यक्रम होगा युवावाणी कल सायं 5:15 पर। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा कल सायं 5:45। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कल सायं 6:41 पर कलाकार होंगे अनूप जलोटा। ग्रामीण स्वतः कार्यक्रम होगा ग्राम जगत कल सायं 7 बजे। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल सायं 7:40 पर। लोकगाथा कार्यक्रम के अंतर्गत कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे।

लोकगाथा भंडारी नेत का अंतिम भाग। फिल्म संगीत एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में कल रात 9:15 पर। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम कल रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली के इंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल रात 10:00 और फिल्म संगीत आप सुनेंगे एक बार फिर कल रात 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, युवाणी के आज के अंक में आप सुनेंगे चर्चा, विषय है अपडेट रहें, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस। साथ ही व्यक्ति विशेष में आप सुनेंगे दादा भाई नौरोजी पर चर्चा। इतिहास में आज के दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, ये जानेंगे आज के इतिहास में। दोस्तों, कहते हैं कि जो समय के साथ चलता है वो अपनी मंजिल जल्दी पा लेता है। समय जिसका साथ देता है उसके पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। अब समय के साथ चलने का क्या मतलब है? इस तेजी से बदलते युग में जब सूचनाओं का भंडार आपके लिए खुला हो, समय के साथ चलने का मतलब होता है खुद को अपडेट रखना। अगर आप खुद को अपने परिवेश में हो रही घटनाओं से परिचित नहीं रखेंगे तो आप थोड़े समय बाद पिछड़ जाएंगे। बदलना तो प्रकृति का नियम है। समय बदलेगा तो हमें भी खुद को बदलना पड़ेगा, तभी हम बदलते समय के साथ कदम मिला पाएंगे। कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद, इसलिए जीतने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। नई जानकारी, नई खोजों पर हमेशा नजर रहनी चाहिए। व्यक्तिगत विकास के लिए तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अपडेट रहने से हमारी सोच का विस्तार होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की हमारी क्षमता का विकास होता है। ये तो थे अपडेट रहने के फायदे। अब हम ये जान लेते हैं कि अपडेट कैसे रहा जाए। प्रतिदिन 20-30 मिनट तक पढ़ना, कुछ नया सीखना, अच्छी आदतों का अभ्यास करना, अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम खुद को अपडेट रख सकते हैं। तो दोस्तों, रोज कुछ नया सीखो और जमाने के साथ कदम मिलाकर चलो।

दोस्तों, संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं है, बल्कि यह आम जनता की आवाज को, आम जनता की आकांक्षाओं, उनके अधिकारों को सत्ता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। संसद की इस महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए हर वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 30 जून का दिन इसलिए चुना क्योंकि साल 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। अंतर संसदीय संघ दुनिया की संसदों का सबसे पुराना वैश्विक संगठन है, जिसे IPU भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो लोकतंत्र की आधारशिला यानी संसद को मजबूत और जवाबदेह होना जरूरी है। दोस्तों, आज के दिन यानी 30 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2016 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की। शूद्र ग्रह, जिन्हें एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है, चट्टानों और धातुओं से बने छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आकार में ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं। इन्हें लघु ग्रह या बौने ग्रह भी कहा जाता है। ये अधिकतर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। कभी कभी बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण कुछ शूद्र ग्रह अपनी कक्षा से भटक जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले एक विशाल शूद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण ही डायनासोर विलुप्त हो गए थे। 30 जून साल 1908 को रूसी संघ के साइबेरिया के तंगुस्का में एक उल्कापिंड विस्फोट ने एक बड़े जंगल को नष्ट कर दिया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि आम जनता में शूद्र ग्रहों के प्रभाव से होने वाले संभावित खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाए और पृथ्वी की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रोत्साहित किया जाए। और अब दोस्तों, आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के जरिए।

0: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो

0: जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, भारत के औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय चेतना के उदय के शुरुआती दौर में अनेक महान व्यक्तित्व ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रपात में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही एक शख्सियत थे दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से विख्यात थे। आज यानी 30 जून को उनकी पुण्यतिथि है। 4 सितंबर साल 1825 को मुंबई में गुजराती भाषी पारसी परिवार में जन्मे नौरोजी ब्रिटिश आर्थिक नीति के आलोचक थे। महात्मा गांधी से पहले वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। साल 1867 में उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस पार्टी का अग्रदूत माना जाता है। साल 1885 में एओ ह्यूम और एसएन बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में ब्रिटिश सांसद के पहले एशियाई सदस्य भी रहे। वो इंग्लैंड में साल 1892 में लिबरल पार्टी के सांसद के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए, जहां साल 1895 तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। नौरोजी को विशेष रूप से ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादन के लिए जाना जाता है, जिसमें तर्क दिया गया था कि ब्रिटिश शासन के तहत आर्थिक शोषण के कारण भारत से ब्रिटेन में धन का हस्तांतरण हुआ। उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपने इन विचारों का विस्तार से वर्णन किया। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने देश की सेवा के लिए बहुत से कार्य किए। साल 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिए गए भाषण में उन्होंने स्वशासन की मांग की। 30 जून साल 1917 को 91 वर्ष की आयु में उनका निधन मुंबई में हो गया। और अब दोस्तों, मनोरंजन करते हैं इस गीत के जरिए।

और अब दोस्तों एक नज़र आज के इतिहास पर। आज ही के दिन यानी 30 जून साल 1911 को प्रख्यात लेखक साहित्यकार एवं कवि नागार्जुन का जन्म हुआ। अपनी काव्य शैली के कारण नागार्जुन को तुलसीदास के बाद एकमात्र हिंदी कवि माना जाता है जिनके श्रोता ग्रामीण से लेकर अभिजातीय वर्ग तक फैले हैं। साल 1921 में आज ही के दिन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक रघुवंश का जन्म हुआ। साल 1928 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म हुआ। 30 जून साल 1934 को प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CNR राव, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव का जन्म बेंगलुरु में हुआ। नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टिविटी जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 2013 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 30 जून साल 1917 को ब्रिटिश कालीन भारत के प्रख्यात समाजसेवी, शिक्षाविद एवं नेता दादाभाई नौरोजी का निधन हुआ। ये तो थी एक नजर आज के इतिहास पर। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल हमने आपसे पूछा था कि महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म कब हुआ था। इसका सही उत्तर था 29 जून 1901 को। और अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, साल 2013 में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिएगा। साल 2013 में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हमें आज का युवाणी कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। नमस्कार।

अभी और साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सबे श्रोता दगड़ियों कमी आप दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोताओं आजक दिन दादा भाई नैरोजी पुण्यतिथि मनोर नागरिया। दादाजी नैरोजी पुण्यतिथि 30 जून भारतक निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में उनर अतुलनीय योगदान का याद करूं। उनके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारतक वयोवृद्ध पुरुष ले कही जा उनर निधन आज के दिन 30 जून 1917 हूँ हो। उन्होंने स्वराजक नारदे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में नैरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक मंच बैठी स्वराज स्वशासनक मांग उठाने वाले पहल व्यक्ति थी। धन निकासी सिद्धांत में उन्होंने दुनिया के बता कि कैसी ब्रिटिश नीतियाँ और भारी धन भारत को प्यार भेजने लाग रही देश के आर्थिक रूप बटी वो कमजोर करने लाग रही। वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स लीजी चुनी जाने वाले पहल एशियाई भारतीय थी। वो एक महान शिक्षाविद और समाज सुधारक ल रही। उन्होंने चेलियों की शिक्षा का बढ़ावा देणक लीजी 1848 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक थी और 1886, 1893 और 1906 में 3 बार वो कांग्रेस अध्यक्ष रही। दादा भाई नैरोजी ब्रिटिश उपनिवेशवादक भारतक स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मनखी थी और ब्रिटिश संसदक लीजी चुनी जानी वाल पहल भारतीय थी। नैरोजी फारसी थी जो भारतक नन्नन पारसी समुदायिक सदस्य थी। उनार 5 दशकों के राजनीतिक कार्यों के दौरान नैरोजी भारतक विविध धार्मिक और जातीय समुदायिक सदस्यों के राजनीतिक सुधार और औपनिवेशिक मुक्ति आंदोलन में एकजुटकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अत्यंत प्रगतिशील विचार अपनाई। यश बखत में जब भारत में अधिकांश महिलाओं के कुल प्रकारक शिक्षा प्राप्त नहीं थी, उन्होंने बम्बई में चेलियुग लीजी पहल स्कूल स्थापित करो। 1860 दशक का अंत तक नेहरू जी एक अन्य मुद्दों के लिए बेहद चिंतित है गया। ब्रिटिश शासनक तहत भारतक बिगड़ती गरीबी 19वीं सदी उत्तरार्ध में भारतक अकालक एक अभूतपूर्ण और विनाशकारी लहरक सामना करना पड़ो, जमें सबसे रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार 28 मिलियन भेट को ज़्यादा लोग मर गई, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों यो आपदाओं के लिए केवल प्राकृतिक आपदाओं का ही जिम्मेदार ठहरा। नेहरूजील तर्क दे कि भारत में जानबूझकर धनक निकासी करी जाने लग रहे, जैक तहत ब्रिटिश नीतियां देश भर को पूंजी का प्यार निकलने लग रही। 1893 में संगठनक अध्यक्षक रूप में उन्होंने कहा कि चाहे मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, फारसी हूँ, ईसाई हूँ या कोई अन्य धर्म हूँ, लेकिन मैं सबसे

भी 19वीं सदी उत्तरार्ध में भारतक अकालक एक अभूतपूर्ण और विनाशकारी लहरक सामना करन पड़ो, जमें सबसे रूढ़िवादी अनुमानों अनुसार 28 मिलियन भेट को ज्यादा लोग मर गई, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों यो आपदाओं के लिए केवल प्राकृतिक आपदाओं का ही जिम्मेदार ठहरा। नैरोजील तर्क दे कि भारत में जानबूझकर धनक निकासी करे जाने लग रहे, जैक तहत ब्रिटिश नीतियां देश भर को पूंजी का प्यार निकलने लग रही। 1893 में संगठनक अध्यक्षक रूप में उन्होंने कहा कि चाहे मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, फारसी हूँ, ईसाई हूँ या कोई अन्य धर्मक हूँ, लेकिन मैं सबसे सर्वोपरि एक भारतीय छू। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक अध्यक्षक रूप में कार्यभार संभालते हुए उन्होंने घोषणा करी कि भारतीयों के लिए स्वराज या स्वशासन प्राप्त करणक दिशा में काम करणक बखत अगो। उन्होंने कहा कि स्वशासन ही भारत के पुंगु बरोणी वाल धनक विनाशकारी पलायन का रोकणक एकमात्र उपाय छू। नैरोजील अगिल वर्ष 80 वर्षक आयु में राजनीति पर को संन्यास ले। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक यश संगठनक रूप में स्थापित करो, जो आंतरिक मतभेदों के बावजूद ज्यादा मजबूत राजनीतिक रूप में आत्मविश्वासी होते गो। भारतीय गरीबी पर उन्हर विश्लेषण, उन्होंने दावा करो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद मूल रूप बटी शोषणकारी छी, भारतक स्वतंत्रता संग्रामक एक केंद्रीय सिद्धांत बन गए। यह अलावा उन्होंने भारतीय नेताओं का एक नई पीढ़ी मार्गदर्शन दे। उन्होंने अनंततः औपनिवेशिक शासनक अंत करो, उन्हें निष्पक्षता, उन्हें वेदाक चरित्र भारत के हमेशा एक आदर्श महान प्रदान करूं, जनर अनुसरण करी जसकू।

श्रोता अब सुन लगराज्या शांति सहायक स्वर में यो कुमाऊनी लोकगीत। श्रोता आज के दिन हम मनो लागरिया अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस यो हर साल 30 जून हो मनाई जा। यक मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में मौजूद शूद्र ग्रहों बटी पृथ्वी में होने वाले संभावित खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और बचाव उपायों पर चर्चा करण। संयुक्त राष्ट्र महासभा दिसंबर 2016 में एक प्रस्ताव पारित कर फिर साल 30 जून हो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस मनोनक आधिकारिक घोषणा करी। 30 जून हो तारीख तुंग इसका घटना की याद में चुनी गई यह दिन छु। 30 जून 1908 हो रूस में साइबोरिया क्षेत्र में तुंगुस्का नामक शुद्ध ग्रह पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश कर गोची और यह भयानक विस्फोटक दगाड़ फट गोची। एक प्रभाव में 2100 वर्ग किलोमीटर इलाके तक लगभग 8 करोड़ डाइबोट नष्ट है गया ची। यह मानव इतिहास में दर्ज सबसे ठूल शुद्ध ग्रह प्रभाव ची। एक लीजी आम मनखियों के वैज्ञानिकों के और नीति निर्माताओं के अंतरिक्षक यो चट्टानों पर परिचित करूँ छू। वैज्ञानिक अनुसंधानों बट को शुद्ध ग्रहों बट को ट्रैक करण उनर पहचान करण और उनर प्रभावों बट को निपटण के लीजिए वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों प्रयासों का बढ़ावा देण छू। यह लीजिए सुरक्षा और बचाव तरफ धरती की रक्षा के लीजिए भविष्य आपदाओं पूर्व तैयारी करण छू।

0: श्रोता आप सुन लग रहा है गढ़वाल लोकगीत सम्मेलित स्वर में गई कार्यक्रम है गिल आपको सुनान लग रहा भेंट वार्ता जात्रा कसार फेस्टिवल में कसार देव अलमण में आयोजित अंतरिक्ष नक्षत्र में नंतिनुक भागीदारी पर राकेश बिष्ट दगड़ करी गई प्रेम आर्या की क्षेत्र संकलित बातचीत। तो आज हम पुजरिया कसार देव अलमड़ में जहाँ जात्रा कसार फेस्टिवल मियल चल रहा और हमारी मुलाकात होने लग रही है यहाँ राकेश बिष्ट जुदगढ़ जो नाइनतीनु के अंतरिक्ष नक्षत्रों के बाढ़ में शिकोण लाग रखी और उनर एक कंपनी यो चीजों में काम कराने लाग रखी। तो सबसे पहली राकेश जी अपन हमारे कार्यक्रम में स्वागत छू।
1: नमस्कार सर जी।
0: जी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताओ कि ये जो यात्रा कसार फेस्टिवल छू यो छू की और यो कबड्डी कब तल आयोजित होने लाग रहा।
1: तो असल में ये जो यात्रा फेस्टिवल छू यो कसार में पहली बार होने लाग रहा
0: जी
1: जो कि 24 जून बटी यो स्टार्ट हो और 28 तारीख तक यो हगेल 5 दिन कार्यक्रम छू यो टोटल मिले हुए
0: जी।
1: तो असल में यह कार्यक्रम जो उद्देश्य छू मैं तीन संस्था छीन जो एक मिलवे करनी एक हिमालयन रूट रिवाइवल जो मेन संस्था छू वह दगड़े में कर्तव्य कर्मा और टीम देवस्थली जो छू तीन संस्था यो छीन में जो मिलवे एक चलोनी। तो यहाँ इमें बहुत सारे कार्यक्रम इमें धरें मैं नंति नाले जी बहुत सारे स्टॉल यहाँ लग रहे हैं जमें अलग अलग तरीके कार्यक्रम चल रही है यहाँ जैसी पोट्री नंदिन उमें कुछ शिक्षक नहीं यहाँ पे ऐपन आर्ट वगैरह कुछ कार्यक्रम चल रही है और बहुत सारे जो हमारे स्थानीय व्यापारी छीन उन्होंने जी कुछ कुछ स्टॉल्स उन्होंने यहाँ लग रहे हैं। साथ में जो नंदिन खेल कूद में इस तरीके की एक्टिविटीज में अपन पार्टिसिपेट करना चाहनी तो उन्होंने जी बहुत सारे कार्यक्रम जैसे यहाँ साइकिलिंग रेस है दो दिन पहले और दौड़ा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित छू जो हॉल और रत्ती पर योगा कार्यक्रम लो यहाँ चल रहा और वैदगढ़ में जो हमारे मंच में छू उमें कुछ कुछ जो अपन फील्ड में जनरल महारत हासिल कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे अनुभव का साझा करने लोग उदगे तो वो कार्यक्रम साथ में चल रही। और ब्याहू जो छू ब्यालवटी हमारे यहाँ मेन स्टेज में कुछ जो रंगारंग कार्यक्रम छेन वो सब ले चल रही में
0: सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में की एल दिखने लग रखी की प्रोग्राम होने लग रखी।
1: सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग दिन अलग अलग तरीका जो आर्टिस्ट छे वो लोग यहाँ होने कुछ अलग तरीके के कार्यक्रम चल रहा थी आज कुछ अलग तरीके के कार्यक्रम।
0: तो यो हमारे जो कुमाऊं का एक संस्कृति छू उके अगिल बढ़ोना का एक प्रयास छू या फिर हमारे जो बॉलीवुड वगैरह जो डांस वगैरह।
1: असल में यो बहुत बड़ी बात मूल कर रहा है असल में मेन उद्देश्य हमारे कुमाऊनी संस्कृति अगिल जो अलग अलग काम करनी वो सब आर्टिस्ट तरीके विधा में काम करनी आर्टिस्ट नई नई तरीके आर्टिस्ट हैं उन्हें लीजिए ओपन माइक मंच यहाँ धर रहा जब मैं हूँ अभी कुछ कुछ अपना वक्तव्य धर सकनी चाहे वो गाने गाने से रिलेटेड हो या फिर कुछ कविताएं कुछ लोग करनी कुछ असल जो अच्छा नई चीज़ जो रैप बोले कुछ नंतिनिया के अभी करनी।
0: अच्छा आप पूर्व कहने की नंतिनु के लीजिए बहुत सारे आप कार्यक्रम होने लग रखी तो यो जो नंतिनु के लीजिए कार्यक्रम होने लग रखी ये कह आयोजित को कराना लग रखो और वीक बाद उनका जो पुरस्कृत करी जाल को माध्यमल करी जाल।
1: हाँ असल में जो कुछ कार्यक्रम छ जैसे वर्कशॉप छू या अपन कार्यशाला जो है उमें कुछ यहाँ जो लोकल आर्टिस्ट हैं जो अपन क्षेत्र में महाराज जनरल हासिल कर रहे हैं वो एज अ ट्रेनर यहाँ पे काम करनी वो ट्रेनिंग देनी नंतिना के
0: जी।
1: और असल में कुछ यहाँ पे प्रतियोगिता धर रही थी जैसे ऐपन प्रतियोगिता है तो उमें जो ले विजेता रही उनके पुरस्कार ले दी गो और इसका जैसे मिल साइकिलिंग बारे में बता तो साइकिलिंग में ले जो ले विजेता थी वो अंडर 18 ले थी उमें 18 साल अभी कम नंतिन और अंडर 16 वाले उमें एक नंतिना ग्रुप थी तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके और उमें सबसे बड़ी बात यह छू कि मैं तीन महिलाओं ले पार्टिसिपेट करो तीन जो हमारे कुमाऊनी लड़कियां छी उन लोग में पार्टिसिपेट करो साइकिलिंग में जो कि एक बहुत बड़ी बात
0: आज के वक्त में बहुत भल ठुल काम छू किले की हम एक तरीका अपन मोबाइल में या जो हमारे पास संसाधन छन हम उमू तक सीमित रह गया है। अगर हम यस तरीका फेस्टिवल कार्यक्रम आज के वक्त में दूर दराज गाँव क्षेत्रों में करनू तो ये के फैद मिल सकल कदू कारगर समझ लग रखा है आपको।
1: असल में इस तरीके का कार्यक्रम जदू ज्यादा हमारे आसपास है तो ये हमारे युवाओं के उदू ज़्यादा ये कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिला उनका नई नई चीज़ सीखना मौका मिला। असल में यह जो कार्यक्रम हो ये आप देख पाने ला जैसे कि ये पूरा जो कार्यक्रम छो का इस तरीके से बढ़ा ही रहो कि अधिक से अधिक हम लिमिटेड जो संसाधन छो ना यूज़ करवे यह सब बढ़ा रखो हम बोलिया ताकि युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट में हम देख सकूँ।
0: सरकार द्वारा बहुत सारे स्वरोजगारों के लीजिए तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित करी जान लग रही। हम देखने लग रहा कि तमाम तरीका स्टॉल यहाँ देखने लग लीजिए मिलने लग रही कदू दूर दराज बट को यहाँ आ रही।
1: असल में जो स्टॉल छे वो तो अधिकतर कुमाऊं और गढ़वाल वाल क्षेत्र बड़ी छिन, यानी कि उत्तराखंड बटी छिन अधिकतर, लेकिन जो

0: हमारे कार्यक्रम हैं, जैसे मैंने तुमको साइकिलिंग बता या दौड़ बता, तो वेल जी सिर्फ उत्तराखंड में ना बकायदे पूरा देश बटी। हमारे पास कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ अराची, जो कि हरियाणा बैराची, हिमाचल बैराची, जो जनरल साइकिल में प्रतियोगिता में यहाँ हिस्से ले अपन, और यह से जो दौड़ प्रतियोगिता होनी चाहिए हमारे, मतलब काफ़ी अलग अलग जगह पर लोग होंगे।
1: उम्मीद करूँ कि बहुत फल फूल काम आप कर रहा लग रखा के, लेकिन आज समाज की जो चीज़ एक जरूरत छू, पर्यावरण की दृष्टि अगर हम देखनु, कसारक एक अलग प्रकृति की सुंदरता छू, पर्यावरण का लिए आप के समस्या, स्वच्छता का लिए आप के समस्या।
0: असल में आज ये हमारी जरूरत बहुत ज़्यादा छू, क्योंकि जो हिसाबल पहाड़ के लोग थोड़ा बहुत जो सफाई लीजिए ध्यान देना जरूरत छू, यहाँ यह कसार फेस्टिवल में हम पा 100 हवे ज़्यादा जो वॉलेंटियर आ रही, जो कि कॉलेज और स्कूल अंतिम जी, उन्होंने यह कार्यक्रम का स्टार्ट करना हुए पहले पूरा जो आसपास एरिया छू ओके साफ करो, पूरा 2-3 दिन लगे हुए ओके साफ करो, और पॉवर्टी जो वेस्ट जो छू ओके यहाँ कैसी हम उसका यूज कर सकन, कैसी साज सज्जा अपन ये कार्यक्रम जी हम यूज कर सकन, तो वो एक संदेश हुआ असल में हमारे आसपास के युवाओं के हैं कि हम कैसे अपन आसपास के ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा साफ सुथरा कर सकें, क्योंकि ये हमारे घर हमारे उत्तराखंड छो, तो हमारे ही जिम्मेदारी छो।
1: सुनने वाले श्रोताओं को आपको के संदेश दिला के जानकारी दिला कि हमारे जो जंगल छन वन छन इनके आगू बट को हम कैसे बच सकन, और यह लीजिए मनखियों का कैसे प्रेरित कर सकन कि आप जंगलों को बचाओ और जंगलों में आग नहीं लगाओ, यह लीजिए आप उनका के महत्वपूर्ण संदेश दिला।
0: असल में बहुत ज़्यादा जरूरत छू आज समाज में यह समझाना कि हमारे जो जल जंगल छन इनका हमेशा आग बटी हमें बचाना जरूरत छू, क्योंकि जब है गर्मी मौसम में या बरसात में हमें पहले जब हमारे जंगलों में आग लगा तो पूरा धुंध जो छू आस पास फैलते जाना है, जैवल गर्मी ले बढ़ रहे हैं पहाड़ों पे, और जो हमारे टूरिस्ट ले अगर जो इन लोग यहाँ घूमो होने तो उस तरीके लोग नहीं एंजॉय कर पाने जैसे कि उन्हें उम्मीद रहे, तो ये हमारी जिम्मेदारी छू कि हम अपने पहाड़ों के बचाओ और जल जंगलों के एक ग्राम पंचायत स्तर पर हम जिम्मेदारी लियाँ कि हम अपने जंगलों के बचाओ, हमारे आस पास उनका बचो, ताकि हमारा जो छू ये बढ़िया रहो।
1: तो राकेश जी, आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बहुत भरी जानकारी दे, उम्मीद करूँ कि आप नैनतिनों की तरफ उनर भविष्य के लिए काम करना लग रहा, तो निश्चित ही आप सफल होला, और आप हमारे अगर बात करिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता आप सुन लग रहा है यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता यात्रा कसार फेस्टिवल में कसार देव अलमड़ में आयोजित अंतरिक्ष नक्षत्र में नैनतिनों भागीदारी पर राकेश बिष्ट दगड़ करी गई यो बातचीत कार्यक्रम आगे आपको सुनान लग रहा लोकगीत गायक छन दीवान कनवाल।

0: श्रोता उपसरण नगराच्या दिवान कन्वालक स्वरमय कुमाऊनी लोकगीत कार्यक्रम अगिल सुनणो यो महत्वपूर्ण संदेश।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: श्रोताओ, आज के दिन हम मनोन लाग रिया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। हर साल 30 जून हूँ यो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाई जा। यो दिन दुनिया भरक नागरिकों जीवन के बेहतर बनौन में संसदों और संसदीय प्रणालियों महत्वपूर्ण भूमिका के पहचान और सम्मानित करण के लिए समर्पित छू। यो महत्वपूर्ण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 मई 2028 हूँ पारित एक प्रस्तावक माध्यम करी गई। 30 जूनक तारीख चुनौनक मुख्य कारण यो छो कि यो दिन वर्ष 1889 में अंतर संसदीय संघक स्थापना हरे छी। संसदों

एक वैश्विक संगठन छू। लोकतंत्र और जवाबदेही संसदीय लोकतंत्र के मजबूतकरण और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करण, विधायिकाओं में महिलाओं और युवाओं और सामाजिक अल्पसंख्यकों की भागीदारी के बढ़ोन छू। आधुनिक वक्त में चुनौतियों सामना करण के लिए संसदों के ज्यादा पारदर्शी और तकनीकी रूप में उन्नत बढ़ोन छू। संसदीय लोकतंत्र यो नाजुक दौर में जब मनखी राजनीतिक संस्थाओं पर भरोस खोण लाग रेखी और लोकतंत्र स्वयं लोक लुभावना और राष्ट्रवादी आंदोलनों में चुनौतियों का सामना करण लाग रो। संसदों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवसक स्थापना करण विशेष रूप बटी महत्वपूर्ण छू। यदि लोकतंत्र के फलन फूलन छू तो कार्यशील लोकतंत्रों पर आधारशिला रूप में संसदों के मजबूत पारदर्शी जवाबदेह और प्रतिनिधिपूर्व होना आवश्यक छू। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस ऊ बखत छू जब संसदों द्वारा ज्यादा प्रतिनिधि बनन और बखतक दगाड़ अगिल बढ़ोनक लीजिए कुछ प्रमुख लक्ष्यों के प्राप्त करणक लीजिए प्रगति की समीक्षा करी जा, जमें स्वयं मूल्यांकन करण, सकर महिलाओं और युवा सांसदों के शामिल करण लीजिए काम करण और नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होना शामिल छू। संयुक्त राष्ट्रक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जैसे विश्व संसद दिवसक रूप में जानी जा, प्रतिवर्ष 30 जून हो विश्व भर में मनाई जा, ताकि लोकतंत्र, जवाबदेही, मानवाधिकार और लैंगिक प्रतिनिधित्व के बनाए धरण में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सको। यो दिन यो बातक समीक्षा करण के लिए एक मंचक रूप में काम करूं कि संसद आधुनिक लोकतांत्रिक मानकों के पूर्तिकरण में कदू प्रगति करण लग रहे, जोश की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं के शामिल करण, ज्यादा पारदर्शी होन और नई तकनीकों का उपयोग करण छू। तो हमारे में के सहयोग हो सकूँ यो बात कला हमके सुनिश्चित करना पड़ल कि जो संसदीय दिवस हम मनाने लग रहे उमें मनखियों जनता कदुक अपन ठूल सहयोग छू, यो बात कला पछाड़ने की आवश्यकता छू। कार्यक्रम में अगिल अब आपको सुनान लाग रिया गढ़वाली लोकगीत नरेंद्र सिंह नेगी और उनार दगड़ूक स्वर में गाई हुई।

श्रोता अब सुनने लगा अच्छा गढ़वाली लोकगीत नरेंद्र सिंह नेगी और उन दगड़ियों के स्वर में। और यही लोकगीतक दगाड़ हमारे आजक उत्तरायण कार्यक्रम इन लेकर संपन्न हो। आपू दगाड़ हो एक नई अंक में फिर भेंट हुई। और अब थोड़ा देर बाद सुनला आपू उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार जो हमारे देहरादून केंद्र बटको रिले हाल। आपू थोड़ा प्रतीक्षा करिया, एलमी का आज्ञा दियो। नमस्कार।

यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बन

0: परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्य की अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी। और एथलीट ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया।

0: प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न सड़क एवं आधारभूत संरचना विकास प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में राज्य की सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति देने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 2,966 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इनमें श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार मार्ग का 4 लेन विस्तार, लोहाघाट और पिथौरागढ़ बाईपास, मझोला खटीमा मार्ग का चौड़ीकरण तथा रामनगर कदानी खेत मार्ग का सुदृढ़ीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री ने अर्धकुंभ 2027 को देखते हुए हरिद्वार बाईपास योजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा कोटद्वार बाईपास के कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया, जिस पर सहमति की गई। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को स्पर मार्गों से जोड़ने की लगभग 3,000 करोड़ रुपये की परियोजना और अल्मोड़ा में टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण के प्रस्ताव भी रखे, जिन पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी। बैठक में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के उपचार के लिए DPR तैयार करने संबंधी समझौतों को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में भी सुधार होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से समीना।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन एवं समर्पण के तहत आगामी 4 जुलाई से 15 दिन तक प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें धामी सरकार के पिछले 5 साल के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजना का लाभ देने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को बिना किसी भागदौड़ की सरकारी सेवाएं मिली, यही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी क्रम में सभी जिलों में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से गत वर्ष 17 दिसंबर से राज्य भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इसकी अगली कड़ी यानी दूसरे चरण में 4 जुलाई से सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। उत्तराखंड रजत जयंती पर इस बार हरेला पर्व पर राजधानी देहरादून में लगभग 15 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर देहरादून कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष का महाभियान केवल रस्म अदायगी नहीं बल्कि धरती को हरा भरा बनाने का एक जन आंदोलन बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 25वें वर्ष यानी रजत जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 16 जुलाई से शुरू होने वाला यह

0: लोक पर्व पूरे एक माह तक बेहद खास और यादगार अंदाज में मनाया जाएगा। इस बार जिले में थीमेटिक तरीके से विशेष प्रजातियों के पौधे लगाकर इको टूरिज्म को एक नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया गया है। डॉक्टर चौहान ने सभी सरकारी विभागों को अविलंब अपनी रोपण साइट्स का चयन करने के निर्देश दिए। साथ ही महाभियान में आम जनमानस के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिला समूह और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत चलाए गए 100 दिवसीय राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान का चमोली जिले में सफलतापूर्वक समापन हो गया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. भगवती प्रसाद पुरोहित ने बताया कि अभियान के दौरान जिले के 235 चिन्हित हाई रिस्क गांवों में से 225 गांव की सफलतापूर्वक स्क्रीनिंग की गई। अभियान का उद्देश्य टीबी रोगियों की समय रहते पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करना तथा जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। आगामी दो दिन तक इसके राज्य के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के आसार हैं। आज राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पौड़ी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया। उधर नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हुई बारिश से शहर कई निचले इलाकों और मुख्य मार्गों पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि प्रशासन ने मानसून से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
2: देखिए, मानसून ऑफिशियली हमारे प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। उसको देखते हुए पूर्व से ही मानसून की तैयारियों के लिए सभी रेखीय विभागों को निर्देश दिए गए थे। खासकर इसमें जल भराव और निकासी की जो समस्याएं और शिकायतें आती हैं उसके निराकरण के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। नालियों की निरंतर सफाई के लिए और वाटर लगिंग जो एरिया हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पर विशेष निगरानी बनाते हुए डी वाटरिंग पम्प की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सभी कार्रवाई समय पर पूर्ण करने के लिए कहा गया है। और जैसे भी देहरादून से या मौसम विभाग से फोरकास्ट प्राप्त होता है या कोई चेतावनी प्राप्त होती है उसको प्रसारित करके उसके अनुसार जो हमारा तंत्र है उसको सेंसिटाइज किया जाता है।
0: प्रदेश की एथलीट ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की अंकिता ध्यानी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रतिस्पर्धा में 3000 मीटर स्टिपल चेस में स्वर्ण पदक जीता और 1500 मीटर दौड़ में भी रजत पदक अपने नाम किया है। अपनी उपलब्धि के चलते उनका सितंबर में जापान में होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए चयन हुआ है।
3: इस सफलता के पीछे मेरे कोच का मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग सबसे महत्वपूर्ण रहा है। मेरे कोच का नाम साइमन स्कॉट है, जो यूएसए में रहते हैं और मैं उनके अंडर ट्रेनिंग करती हूं। एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के उद्देश्य से मैंने लंबे समय तक अनुशासन और समर्पण के साथ लगातार कठिन मेहनत की है। अब मैं पूरी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व करूँगी और भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। धन्यवाद।
0: सीमांत जनपद चमोली की नीति घाटी में आयोजित 6 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता आज मलारी के खेल मैदान बुरांस में संपन्न हो गई है। खेल प्रतियोगिता से भोटिया जनजाति के ग्रामीण खासे उत्साहित हैं। जिला क्रीडाधिकारी मोहित सिंह ने बताया कि खेल विभाग द्वारा वाइब्रेंट विलेज के गाँव में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की गई।
4: सीमांत गांव के अंतर्गत खेल विभाग द्वारा यहां पर वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता का आयोजन मलारी के बुरांस खेल मैदान में किया गया, जिसमें हमारे यहां पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया, जिसमें जितने भी हमारे प्रतिभागी खिलाड़ी थे, महिला थे, पुरुष थे और जो भी बच्चे थे, उनको यहाँ पर खेल विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन एवं विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्य की अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी और एथलीट ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं लखबीर सिंह लखा और साथियों का गाया ये भजन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बीटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में प्रियंका।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दगड़ा, प्रदेश की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करी। राज्य की सड़क अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। प्रदेश में भोलबटी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त वेजालू, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संचालन नए व्यवस्था का तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक

0: परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दगड़ा, प्रदेश की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा कैरी। राज्य की सड़क अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। प्रदेश में भोलबटी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त, वेजालू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संचालन नए व्यवस्था का तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कर लू। राज्य में 4 जुलाई बिटी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को दूसरो चरण शुरू होलू। और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक। मौसम विभाग कई जिलों में भारी बरखा, गरज चमक और तेज बथौते लेके चेतावनी जारी करी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखंड से जुड़िया विभिन्न सड़क और आधारभूत संरचना विकास प्रस्तावों पर चर्चा करी। बैठक में राज्य की सड़क अवसंरचना ते मजबूत कनकुणी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि का तहत वर्ष 2026-27 गुणे लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति देने पर सहमति व्यक्त करेगा। यहाँ के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अंतर्गत लगभग 2966 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख परियोजनाओं तहत भी मंजूरी दे गया। यहाँ श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार मार्ग का 4 लेन विस्तार, लोहाघाट और पिथौरागढ़ बाईपास, मझोला खटीमा मार्ग का चौड़ीकरण और रामनगर रानीखेत मार्ग थे मजबूतीकरण शामिल छ। मुख्यमंत्री अर्धकुंभ 2027 से दिक्कत हरिद्वार बाईपास योजना थे समयबद्ध ढंग से पूरा करण और कोटद्वार बाईपास का कार्यो में तेजी लाना का भी अनुरोध कारी, जहाँ पर सहमति व्यक्त करेगा। उन राष्ट्रीय राजमार्गों तथा इस पर मार्गों से जुड़ने की लगभग 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और अल्मोड़ा मा टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण का भी प्रस्ताव रखें, जहां पर केंद्रीय मंत्री सैद्धांतिक सहमति दे। बैठक में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर का माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उपचार खुणे DPR तैयार करण और संबंधी समझौता है भी मंजूरी दे गया। मुख्यमंत्री बोली कि यूं परियोजनाओं थे लागू करण से सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत वाली, पर्यटन थे बढ़ावा मिलालू और आपदा प्रबंधन क्षमता में भी सुधार वाल। आकाशवाणी देहरादून खून समाचार कक्ष बटे रुचि रावत।
0: राज्य में भोलबटी मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ू बदलाव लागू हुए चालू। ये का तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हुए चालू और राज्य का सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संचालन नए व्यवस्था का तहत किए जालू। भोलबटी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड और वे से जुड़िया संबंधित उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 2019 प्रभावहीन हुई जाला। राज्य सरकार ने एक ही जगह पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम का तहत नए व्यवस्था लागू करी। नए व्यवस्था का तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों ते मान्यता प्रदान कन, उनकी निगरानी कन और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित कनकु कार्य कर लू। इन व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय का दगड़ा दगड़ी सिख जैन ईसाई बौद्ध और पारसी समुदायों का शिक्षण संस्थान भी शामिल होला। सभी संस्थानों को निर्धारित मानकों को पालन कन और प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कन अनिवार्य होलू। राज्य सरकार का अनुसार नए व्यवस्था को उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित कन च। पिथौरागढ़ जिला का भूस्खलन प्रभावित देवल गांव में आज 130 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इकोलॉजिकल कुमाऊं की तरफाबटी 10,000 पौधों को विशेष वृक्षारोपण अभियान चलेगे। अभियान में वन विभाग, पूर्व सैनिकों, स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों भाग लेनी। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मृदा संरक्षण का उद्देश्य से आयोजित किए गए। देवल गांव भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र च, पिछला वर्ष भी यही क्षेत्र में 10,000 पौधा लगे गए छा, जैका सकारात्मक परिणाम ते दिख दी, ये बरस भी अभियान ते अग्नि बढ़ेगे। अल्मोड़ा जिला का जूला गांव का रजवार थोक स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में आयोजित वैश्विक कार्यक्रम में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन मुख्य अतिथि का रूप में प्रतिभाग कैरी। कार्यक्रम ते संबोधित कर दी कैबिनेट मंत्री बोली कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराएं राज्य की पहचान छिन। उन

0: वैशी और जागर जन लोक परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत को महत्वपूर्ण हिस्सा च जैते आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचाने सभी की जिम्मेदारी च। श्रीमती आर्यन धार्मिक आयोजन का सफल संचालन का वास्ता मंदिर समिति और स्थानीय ग्रामीणों ते बधे दिन दी बोली कि इन आयोजन समाज ते अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कार्य कर दिन।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणू जे। ताज़ा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: प्रदेश में 4 जुलाई बेटी जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को दूसरा चरण शुरू होलू। 15 दिन तक चरण वाला ये विशेष अभियान का तहत जिला ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाला, जौमा विभिन्न विभागों का अधिकारी और कर्मचारी लोगों की शिकायतों को मौका पर ही निस्तारण करला और दगड़ा दगड़ी सरकारी योजनाओं को लाभ भी उपलब्ध कराए जालू। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि लुखु तैयार समस्याओं का समाधान खुणी सरकारी ऑफिसों के चक्कर न लगान पाड़ बल्कि अधिकारी स्वयं उक द्वार पहुँच की उक शिकायतों को निस्तारण करी। ये उद्देश्य से सेवा पखवाड़ा तहत यो अभियान 4 जुलाई बड़े शुरू करे जानू च। पिछला साल दिसंबर में आयोजित 45 दिनक जन जन की सरकार जन जनक द्वार अभियान के तहत प्रदेश भर में 681 शिविर लगे गिन जैमा 5,33,000 से अधिक लुखुन भागीदारी कैच है। ये दौरान लगभग 33,000 लुखु की शिकायतों को त्वरित समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अभियान सफल संचालन के वास्ता संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों थे शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रह की जन समस्याओं को समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया छिन। आकाशवाणी देहरादून खुणी समाचार कक्ष बेटी अमित सुंदरियाल।
0: उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दियाली। मानसून आज राज्य का ज्यादातर हिस्सों में पहुंची गए जेका दगड़ी ही देहरादून समेत कई जिलों में खूब बरखा हुए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य का ज्यादातर भागों में पहुंची गए। विभाग को वंच के अगला 2 से 3 दिनों में मानसून का शेष क्षेत्रों में भी पहुंचने का आसार छिन। मौसम विभाग ने आज देहरादून टिहरी चंपावत पौड़ी पिथौरागढ़ ऊधम सिंह नगर नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कखी कखी भारी बरखा की संभावना जताई। ये कई दगड़ी सभी पहाड़ी जिलों में भी गरज चमक आकाशीय बिजली बरखा और तेज से तेज बथों का दगड़ी ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बथों चलन की चेतावनी जारी करी। मौसम विभाग का अनुसार 1 और 2 जुलाई ते भी राज्य का कई जिलों में भारी से बहुत भारी बरखा होने की संभावना च। विभागन लुखु से खराब मौसम का दौरान सतर्क रहन और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दीनी। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय का बागेश्वर चंपावत और पिथौरागढ़ परिसरों कुणी शैक्षणिक और शिक्षणेतर संवर्ग में 244 नए पद सृजित किए गए नी। ये संबंध में शासन का आदेश जारी वेगी नी। राज्य सरकार का अनुसार यू पदों को सृजन से तीनी परिसरों ते पहली बार स्थायी शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचा मिललू जैसे कि शिक्षण शोध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत वे सकली। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार बागेश्वर परिसर में 38, चंपावत में 31 और पिथौरागढ़ परिसर में 95 शैक्षणिक पद सृजित किए गए नी। ये के अलावा तीन ही परिसरों का वास्ता पुस्तकालय प्रशासन लेखा और प्रयोगशाला सहित विभिन्न श्रेणियों का कुल 80 शिक्षणेतर पद भी स्वीकृत किए गए नी। विभागन बते की जो पदों पर आउटसोर्स व्यवस्था लागू होली उन पर राज्य सरकार का निर्धारित नियमों का अनुसार अधिकृत एजेंसी का माध्यम से जल्द ही नियुक्तियां किए जाली। सरकार को वंच की नए पदों का सृजन से विद्यार्थियों ते बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिली सकलू और विश्वविद्यालय का तीनी परिसरों में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां ज्यादा असरदार ढंग से संचालित वे सकली। सीमांत चमोली जिला की नीति घाटी में आयोजित 6 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता को आज मलारी का बुरांश खेल मैदान में समापन हुए गए। प्रतियोगिता का विजेताओं ते खेल विभाग की तरफा बेटी सम्मानित किए गए। खेल विभाग और जिला प्रशासन की तरफा बेटी गमशाली और मलारी में 3-3 दिन की प्रतियोगिताएं आयोजित किए गए नी। यूं को उद्देश्य सीमांत गाँव में खेल प्रतिभाओं ते प्रोत्साहित करन और पारंपरिक खेलों ते बढ़ावा द्योण और पलायन ते रोकण की दिशा में सकारात्मक प्रयास कंच। जिला क्रीड़ा अधिकारी मोहित सिंगन बते की प्रतियोगिताओं में स्थानीय लोगों बड़ी चढ़ी के भाग लीनी। दगड़ा ही स्थानीय ग्रामीणों इन पहल को स्वागत कर दी। भविष्य में इन्हीं प्रतियोगिताएं आयोजित कर

और नीति घाटी का अन्य गांव तेभी वाइब्रेंट विलेज योजना का योजना में शामिल करने की मांग कैरी। अंत में मुख्य समाचार एक गांव फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दगड़ी प्रदेश का सड़क परियोजनाओं पर चर्चा कैरी। राज्य की सड़क अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। प्रदेश में भोल बट्टी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हुए जालू। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संचालन न्याय व्यवस्था का तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कर लू। राज्य में 4 जुलाई बेटी जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को दूसरा चरण शुरू हो लू। और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक। मौसम विभागन के जिलों में भारी बरखा गरज चमक और तेज बथों का दगड़ी ही चेतावनी जारी करी। ये कई दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सब दगड़ियन के मैं प्रमोद पांडे नमस्कार। दगड़ियों हमारे यो किसान वाणी कार्यक्रम प्रायोजित छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दगड़ियों आज हम बात करने लग रहे हैं जैविक खेती के बारे में कि हम कसी जैविक खेती के बढ़ावा दे सकूँ। दगड़ियों जैविक खेत कृषि उपद्धति है जमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों एक जाग में प्राकृतिक संसाधनों जस गोबर खाद कंपोस्ट जैव उर्वरकों और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करी जा। यो खेती पर्यावरण संरक्षण दगड़ दगड़े मानव स्वास्थ्य आदि जिले फायदेमंद छे। दगड़ियों वर्तमान वक्त में बढ़ते रासायनिक उपयोग माटिक उर्वरता जल स्रोतों और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़न लग रहा। जैविक खेती माटिक गुणवत्ता बनाए रखा और प्राकृतिक संतुलन के सुरक्षित रखें यह पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थों का उत्पादन हूँ। जैविक खेती के बढ़ावा देना अनेक उपाय छन दगड़ियों जस की किसानों के जैविक खेती के लूणक भर में वीक लाभ भर में प्रशिक्षण हम दी सकनू। जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरकों का उपयोग के बढ़ावा हम उनके दी छे। किसानों के जैविक उत्पादों लीजिए उचित बाजार और बेहतर मूल्य उपलब्ध करूँ ले यह एक फैद छे। कृषि में प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण प्रावधान हम उनके दीन हो। सरकार दगड़ियों योजनाओं जो हमारे सरकारी योजना सन और कृषि वैज्ञानिकों सहायता जैविक खेत के प्रोत्साहित हम कर सकते। दगड़ियों जैविक खेत जो लाभ छन उछन माटे उर्वरता लंब बहत तक बढ़ी रहूँ पर्यावरण प्रदूषण कम हूँ स्वास्थ्य के लिए यो सुरक्षित भोजन हमन के प्राप्त हूँ किसानों की लागत में कमी आ सके और पानी और प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण हूँ। तो दगड़ियों जैविक खेती टिकाऊ कृषि एक महत्वपूर्ण आधार छे। स्वस्थ समाज और सुरक्षित पर्यावरण के लिए जैविक खेती के अपनूण आवश्यक छे। किसानों सरकार और उपभोक्ताओं का सामूहिक प्रयासों जैविक खेती के व्यापक रूप में बढ़ावा दी जा सको। तो दगड़ियों यो तो छी आप लोगों दगड़ बातचीत और कार्यक्रम में अगिल सुनू शंकर उप्रेती गई हुई शो लोक गीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
7: छोटा किसान बने देश की शान।
6: पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि, 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।

0: हृदय कार्यक्रम में अखिल सुनो वैज्ञानिक विधिल बकरी पालन विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ एक विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान डॉक्टर कंचन आर्यादगढ़ करीगे शो भेंटवार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ से विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान डॉक्टर कंचन आर्या। मैडम से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन विषय पर। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि वैज्ञानिक जो बकरी पालन है वो क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?
2: वैज्ञानिक बकरी पालन का अर्थ है बकरियों का पालन वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार करना, जिसमें उचित नस्ल का चयन करना, संतुलित पोषण, स्वच्छ आवास, नियमित टीकाकरण, कृमिनाशन, प्रजनन प्रबंधन तथा रोग नियंत्रण शामिल है। इससे उत्पादन बढ़ता है, रोग कम होते हैं और किसानों की आय में वृद्धि होती है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
1: जी मैम। मैम, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में बकरी पालन का क्या महत्व है?
2: देखिए, जैसे बकरी को आमतौर पर हम गरीब की गाय कहते हैं और हमारे पर्वतीय इलाकों में जो अधिकांश किसान जो होते हैं वो सीमांत होते हैं या छोटे किसान होते हैं और वो मिश्रित खेती पर ही निर्भर करते हैं। इस स्थिति में बकरी पालन एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है, क्योंकि बकरी कम वनस्पति और घास में भी जीवित रहने की क्षमता रखती है और बकरी पालन भारत की जलवायु और आर्थिक स्थिति के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त बकरियां स्वभाव से सभी प्रकार के मौसम के प्रति बहुत सहनशील होती हैं और आवास की अलग अलग नई शैलियों को भी अपनाती है, इसलिए बकरी पालन इस क्षेत्र के जलवायु के अनुसार उपयुक्त है।
1: जी, तो डॉक्टर कंचन, बकरी पालन के लिए हमें कौन कौन सी जो नस्लें हैं वो लेनी चाहिए?
2: ये बहुत अच्छा प्रश्न है पर्वतीय इलाकों के लिए। जैसे भारत में तो बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं, जैसे जमुनापारी है, तोतापारी है, बीटल है, बर्बरी है, सिरोही है, उस्मानाबादी है, ब्लैक बंगाल है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे चौगरखा और उदयपुरी आमतौर पर देखी जाती है जो बकरी है। उदयपुरी अभी पिछले 2 महीने में ही हमारी उत्तराखंड की एक ब्रीड के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त गद्दी है, चारथांगी है, जो रेशा और जिससे ऊन प्राप्त होता है, ये सारी बकरियां उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में होती है। और दूसरी एक बकरी है बर्बरी, जो भी ये बकरी, ये नस्ल की बकरी भी उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जैसे इसकी उच्च प्रजनन दर है, बेहतर उत्पादन प्रदर्शन के कारण ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में एक जमुनापारी के अतिरिक्त एक लाभदायक नस्ल के रूप में उभर रही है।
1: जी, तो मैडम, बकरी की नस्ल का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले बकरी के नस्ल का चुनाव करने से पहले

0: पोषण पद्धति, वहाँ की जलवायु, वहाँ का बाजार के अनुकूल कैसा होना चाहिए, उसके अनुरूप ही अब नस्ल का चयन करना चाहिए। दूसरा, बकरी पालन शुरू करने से पहले शुद्ध नस्ल की बकरी का ही प्रयोग करना चाहिए
1: जी।
0: जो नर होता है उसकी नस्ल के अनुरूप उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। जैसे मध्यम और बड़ी आकार की जो बकरी आप लेते हैं उसके नर का भार 9 महीने में 20 किलो तक होना चाहिए। वो नस्ल की बकरी अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको अधिक उत्पादन मिलने का चांसेस रहते हैं। और बकरी अगर आप लेंगे तो उसमें आपको कैसे लेनी है, जो नस्ल के अनुरूप दूध उत्पादन जिसका अतिरिक्त ज़्यादा हो और जिसकी दो ब्यात के बीच का समय जो है वो बहुत छोटा हो, तो इस तरह की बकरी आपको लेनी है। और इसी तरह की बकरी आपको नस्ल के अनुरूप आप चयन कर सकते हैं
1: जी। मैम, बकरी पालन में पहली बार प्रजनन किस आयु और वजन पर करना चाहिए?
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे जो कृषक होते हैं वो ये देखते हैं कि आयु कितनी हो गई है पशु की, चाहे गाय में हो चाहे बकरी में हो, लेकिन हमें उसके भार पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसकी आयु पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पर्वतीय इलाकों में बहुत छोटी गाय, बहुत छोटी बकरियाँ होती हैं और किसान हमारा उसको गाभिन कराने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसका भार नहीं देखता। हमें उसका शारीरिक अनुरूप भी जरूरी है गाभिन कराने से पहले। तो बकरियों में मध्यम आकार की जो नस्लें होती हैं, प्रथम बार गाभिन कराने के समय उनके शरीर का वजन 15 से 20 किलो और उम्र 10 माह की होनी चाहिए। बड़े आकार की नस्लों में प्रथम बार बकरियों को गाभिन कराने के लिए शरीर का भार 20 किलो और उम्र 12 महीने होनी चाहिए। इसी तरीके से आप एक बकरी को 20 से 30 बकरियों में आप प्रयोग कर सकते हैं। 30 से ऊपर अगर बकरियां हैं आपकी तो उसमें आपको बकरा को थोड़ा संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है पशुपालकों के लिए कि वो 1 से 2 साल के भीतर जो प्रजनन बकरे हैं, नर बकरे हैं, उसको चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि अंतः प्रजनन के जो दुष्परिणाम होते हैं वो रोकने में ये सहायक होता है
1: जी। मैडम, बकरी में गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त जो समय है वो क्या है?
0: ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि गर्मी के लक्षण कैसे हैं पशुपालन को, पशुपालक जो है, बकरी पालक जो है, उसको पहचानने आनी चाहिए। इस गर्मी के लक्षण के बाद 10 से 14 घंटे के बाद आपको उसमें गाभिन मिनर से मिलाना है। गर्मी के लक्षण मैं कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें आपको जैसे बकरी बार बार पेशाब करती है, जो उसके जनांग होते हैं वो उसमें सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, है ना, बार बार वो थोड़ा सा ज़्यादा गतिविधि दिखाएगी। और जो तार होता है जो जनांगों से जो निकलने वाला स्राव होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इस स्थिति में जब आप देखते हैं कि हमारी बकरी है तो उसे 10 से 16 घंटे के बाद ही नर से मिलाना चाहिए
1: जी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है मैडम कि बकरियों के लिए संतुलित आहार वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि आहार हमारे लिए बहुत जरूरी।
0: हाँ, ये बहुत सही बात बताई आपने और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आहार प्रबंधन से ही सारी चीजें हैं, उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता आएगी, उससे प्रजनन क्षमता बनेगी। तो बकरी का आहार में हरा चारा, सूखा चारा, संतुलित दाना उचित मात्रा में देना चाहिए। सबसे पहले जो नवजात शिशु है आप उसको आधे घंटे के भीतर खीस पिलाएं, जिससे उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। बच्चे को उसके 15 दिन या 1 महीने के बाद हरा चारा और धीरे धीरे दाला खिलाना शुरू करना चाहिए। जैसे बढ़ती बकरियां होती है तो उसमें 50 से 100 ग्राम सांद्रण देना है और वयस्क बकरी में 150 से 200 ग्राम सांद्रण खिलाना आवश्यक है। जो आपने बकरियां दूध उत्पादन के लिए रखी है उसमें 50 मिलीलीटर प्रतिदिन दूध के अनुरूप 250 ग्राम सांद्रण मिश्रण देना है। और इसके उपरांत प्रति 1 लीटर में अतिरिक्त दूध पर 500 ग्राम अतिरिक्त सांद्रण मिश्रण जरूर देना है
1: जी।
0: पोषण में खनिज मिश्रणों की कमी को पूरी करने के लिए मिनरल मिक्सचर, जिसे खनिज मिश्रण कहते हैं, 20 से 40 ग्राम देना बहुत जरूरी है। अगर आप संतुलित दाना घर पे बनाना चाहते हैं तो उसमें आधे से अधिक भाग मक्का, ज्वार, बाजरा या गेहूं रखें। इसके साथ 10 से 15% मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी या बिनौला की खली, जो भी आपके पास है वो मिलाएं, और 15% सोयाबीन की खली, 15% चावल की पॉलिश, जो आपके पास टूटा हुआ चावल रहता है, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% आयोडीन युक्त नमक और 1% गुड़ मिला के ये पौष्टिक दाना आप तैयार कर सकते हैं, जिससे बकरी का उत्पादन बढ़ता है
1: जी। मैडम, बकरियों में आवास की क्या विशेषताएं होनी चाहिए?
0: ये बकरियों के आवास प्रबंधन बकरियों के स्वास्थ्य पर सबसे सादा सीधा असर डालता है और हमारे पशुपालक इसी को नज़रअंदाज करते हैं। एक ही जगह पे 30-40 बकरियां रखी रहती हैं, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा कम करना है। सीमांत किसान हैं तो थोड़ी सी जगह की अभाव होता है, लेकिन उसमें भी आपको पर्याप्त धूप और हवा वाला कमरा आपको लेना है जिसमें आपने बकरी बाड़ा बनाया है। गाभिन बकरियां और नवजात शिशु को थोड़े दिन के लिए अलग रखना जरूरी है अन्य बकरियों से। और ठंड, अभी बरसात और ठंड के दिन आने वाले हैं, तो उससे पहले आपको पुआल बिछाएं और प्रति 3 दिन में, अगर 3 दिन नहीं है तो हफ्ते में एक बार पुआल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नियमित सफाई रखें, कीटनाशक का प्रयोग करें, उसके लिए

0: चूना चूने का छिड़काव जरूर रूप से नियमित रूप से करें। फुटबाथ के लिए, जैसे बरसात के समय खुर संबंधी रोग हो जाते हैं, तो फुटबाथ के लिए आप लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं और दूसरा कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और बकरियां स्वस्थ रहती हैं।
1: अब बात करते हैं रोगों के बचाव की, तो हमें बकरियों में लगने वाले वो कौन से रोग हैं, उनका बचाव हम कैसे करें?
0: देखिए, रोगों की रोकथाम के लिए आप सबसे पहले टीकाकरण आवश्यक है, दूसरा कृमिनाशन कार्यक्रम आवश्यक है और तीसरा स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपको पशु बीमार लग रहा है उसे तुरंत अलग करें। नए पशु को बाड़े में लाने से पहले कुछ दिन तक अलग ही रखें ताकि उसमें जो बीमारियां हैं वो आपके रखे हुए पशुओं में ना फैले। एक माह से ऊपर के सभी पशुओं को, जो भी आपके पास बकरियां हैं, उसको साल में दो बार कृमिनाशन कराना जरूरी है। इसके लिए मार्केट में और पशुपालन विभाग से नियमित रूप से कृमिनाशन बांटे जाते हैं, जिसमें एल्बेंडाजोल, फेंडबेंडाजोल, लिवामिसोल, आइवरमेक्टिन ये दवाएं हैं, लेकिन ये दवाएं आप अपने पशु चिकित्सक के सलाह पर ही लें। गाभिन बकरियों को गाभिन कराने से पूर्व और ब्याने के बाद कृमिनाशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी मैडम, बकरी पालन को और अधिक लाभदायक कैसे बनाया जा सकता है और आप हमारे जो और सुनने वाले पशुपालक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बकरी पालन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी नस्ल का चयन, वैज्ञानिक प्रबंधन, संतुलित पोषण, समय पर टीकाकरण एवं कृमिनाशन, प्रजनन का नियमित रिकॉर्ड, बच्चे का नवजात बच्चे के उचित देखभाल और उत्पादकों की सीधी बिक्री हेतु आप किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से करना आवश्यक है। बकरी पालन कम निवेश में अच्छा व्यवसाय बन सकता है यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। आप पशुपालकों से ये निवेदन करूँगी कि वे बकरी पालन पर प्रशिक्षण अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से लें, पशु चिकित्सकों की नियमित रूप से सलाह लें, समय समय पर स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन पर ध्यान दें, पशुपालन विभाग द्वारा बकरी पालन से चलाई जा रही वाली योजनाओं की जानकारी लें। इससे आपकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे।
1: जी तो मैडम कंचन, आपने हमें वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन पर इतनी अच्छी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले सभी पशुपालक इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो धोड़े वाला आप लोग वैज्ञानिक विधि बकरी पालन विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ एक विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान डॉक्टर कंचन आर्यादगढ़ करेगी जो भेंटवार्ता सुनी।
3: किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और दगड़ी और जाने जाने सुन दीवान कनवाला गई हुई शोलो गीत।

तुतकड़े वाला अवलोकनल दीवान करने वाला गई भी यो लोग की सुनो और अब बगत को आज किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न करना हमारे यो किसान वाणी कार्यक्रम का प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो एल मगा आज्ञा दियो, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने वाले हैं पुवौनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दगड़ प्रदेशक सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करी। राज्यक सड़क अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए परियोजनाओं पर बनी सहमति। प्रदेश में भूलबट्टी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त है जल। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का संचालन नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करल। राज्य में 4 जुलाई बटी जनजनक सरकार जनजनक द्वार अभियानक दूसर चरण शुरू होल। और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक। मौसम विभागल कई जिलों में भारी द्यो गौड़ाट चाल चमकण और तेज बयाव के लेवे चेतावनी जारी करे। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखंड है जुड़ी अलग अलग सड़क आधारभूत संरचना विकास प्रस्तावों पर चर्चा करी। बैठक में राज्यक सड़क अवसंरचना के मजबूतकरण के वास्ता लगभग 7,000 करोड़ रुपए परियोजनाओं पर सहमति बने। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में केंद्रीय अवसंरचना निधि के तहत साल 2026-27 तक लीजिए लगभग 750 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के स्वीकृति देने पर सहमति व्यक्त करी है। यह के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 2,966 करोड़ रुपयों की लागत वाली 5 प्रमुख परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई। यह में श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी, लक्सर, हरिद्वार, बाटक 4 लेन विस्तार, लोहाघाट और पिथौरगढ़ बाईपास, मझोला खटीमा मार्ग चौड़ीकरण और रामनगर रानीखेत मार्ग के पक्कीकरण शामिल छू। मुख्यमंत्री अर्धकुंभ 2027 के देखबेर हरिद्वार बाईपास परियोजना के बखतपर ढंगलपुर करण और कोटद्वार बाईपास कामों में तेजी लूणक अनुरोध करो जमे सहमति व्यक्त करिए। उनल राष्ट्रीय राजमार्गों के इस पर मार्गों से जुड़नक लीजिए 3,000 करोड़ रुपयों की परियोजना और अलमाड़ में टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव ले रखो जनर पर केंद्रीय मंत्री सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करी। बैठक में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के माध्यमल भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचारक लीजिए DPR तैयार करण संबंधी समझौते के लिए मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री को की इन परियोजनाओं क्रियान्वयन सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होली, ऊर्जन में आसानी होली, पर्यटन के बढ़ावा मिलल और आपदा प्रबंधन क्षमता में ले सुधार होल। आकाशवाणी देहरादून जी समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: राज्य में भूलबट्टी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अरवे से संबंधित उत्तराखंड और फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 2019 प्रभावहीन है जल। राज्य सरकार एक जाग में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियमक भीते नई व्यवस्था लागू करी हल। नई व्यवस्था के भीतर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों के मान्यता प्रदान करण उनर निगरानी और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करण काम करी जल। यह व्यवस्था में मुस्लिम समुदायक दगड़ दगड़ सिख जैन ईसाई बौद्ध और पारसी समुदायों शिक्षण संस्थान ले शामिल होल। सभी संस्थानों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करण और प्राधिकरण है मान्यता प्राप्त करण जरूरी होल। राज्य सरकार के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान मौक सुनिश्चित करण होल। पिथौरगढ़ जिला भूस्खलन प्रभावित देवलगांव में आज 130 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इकोलॉजिकल कुमाऊं तरफा बटी 10,000 पौधों विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाए गए। अभियान में वन विभाग पूर्व सैनिकों स्थानीय गाँव वालों जनप्रतिनिधियों और अलग अलग सामाजिक संगठनों भाग ले। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मृदा संरक्षण उद्देश्य आयोजित करी गई। देवलगांव भूस्खलनक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र छू। पिछले साल यह क्षेत्र में 10,000 पौध लगाई गई थी जैक भल परिणाम शामिल में उनक बाद यह साल अभियान अगिल बढ़ाई गई। अलमर जिला जूला गोंक रजवार तोक स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में आयोजित वैसी कार्यक्रम में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यल मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करो। कार्यक्रम के संबोधित करण भगत कैबिनेट मंत्री को की उत्तराखंडक लोक संस्कृति और धार्मिक परंपरा राज्यक पछाण छिन। उन्होंने कह की वैसी और जागर जस लोक परंपराएं हमार सांस्कृतिक विरासत तक जरूरी हिस्से छिन जनु के आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पूछूण सबके जिम्मे जिम्मेदारी छू। श्रीमती आर्याल धार्मिक आयोजन के सफल संचालनक लिजी मंदिर समिति और स्थानीय गाँव वालों के बधाई दी। कहो कि यस आयोजन समाज के अपन सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना काम करें।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपु लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुन लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपु लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: प्रदेश में 4 जुलाई बटी जन जनक सरकार जन जनक द्वार अभियानक दूसर चरण शुरू होल। 15 दिन तक चलने वाली विशेष अभियानक तहत जिला ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करी जल, जेमा अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मैसोक शिकायतों के मौके पर निस्तारण करल और सरकारी योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराई जल। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को लोगों के अपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों चक्कर नहीं लगून पड़ो, बल्कि अधिकारी अफी उन्नर द्वार जाने पूछ भी शिकायतों का समाधान करो। यो उद्देश्य सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत यो अभियान 4 जुलाई बठे शुरू करी जानो। पिछले साल दिसंबर में आयोजित 45 दिवसीय जन जन की सरकार जन जनक द्वार अभियान के दौरान प्रदेश भर में 681 शिविर लगाई गयी, जमे 5,33,000 है ज्यादा लोगों ने भागीदारी करी। यो दौरान लगभग 33,000 जन शिकायतों का झट समाधान करी गयो छी। मुख्यमंत्री सपे जिलों में अभियानक सफल संचालन लीजी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के शिविर में अनिवार्य रूपल उपस्थित रहे जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करनक निर्देश ध्यान। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष बठे ममता पांडे।
0: उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसूनल दस्तक दी हाली। मानसून आज राज्यक अधिकांश भागों में पहुंच गए। जैक दगड़ ही देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम द्यो लागो। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राज्यक अधिकांश भागों में पहुंच गए। विभागक बोलन छो कि अगले 2-3 दिनों में मानसून और ले क्षेत्रों में पहुंच चढ़क लीजी परिस्थितियां अनुकूल छिन। मौसम विभागल आज देहरादून टिहरी चंपावत पिथौरगढ़ पौड़ी उधम सिंह नगर नैनीताल और बागशेर जिलों में कै भारी द्योग संभावना जताई छू। एक दगड़ ही सभे पर्वतीय जिलों में गौड़ाट भोड़ाट चाल चमकण और द्योग भत्ते तेज दौर और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार झोंकदार बयाव चलनक चेतावनी जारी करी छू। मौसम विभागक अनुसार 1 और 2 जुलाई के राज्य कई जिलों में भारी से भत्ते भारी द्योग होनक संभावना छू। विभाग मैसोते खराब मौसमक दौरान सतर्क रूण तथा जरूरी हूण पर ही यात्रा कर सलाह दी। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालयक बागशेर चंपावत और पिथौरगढ़ परिसरों के लिए शैक्षणिक और शिक्षणेतर संवर्ग में 244 नई पद सृजित करी गई छिन। यह बार में शासनादेश जारी कर दी गई छू। राज्य सरकारक अनुसार इन पदों में सृजनल तीनों परिसरों के पहली बारी स्थायी शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांच मिलल, जेमा शिक्षण शोध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत होल। उच्च शिक्षा विभागक अनुसार बागशेर परिसर में 38, चंपावत में 31 और पिथौरगढ़ परिसर में 95 शैक्षणिक पद सृजित करी गई छिन। ये के अलावा तीनों परिसरों के लिए पुस्तकालय प्रशासन लेखा और प्रयोगशाला सहित अलग अलग श्रेणियों में कुल 80 शिक्षणेतर पद स्वीकृत करी गई छिन। विभाग बता कि जिन पदों में आउटसोर्स व्यवस्था लागू होने उमे राज्य सरकारक निर्धारित नियमक अनुसार अधिकृत एजेंसी के माध्यम जल्दी नियुक्ति करी जल। सरकार अपूर्ण चुकी नई पदों के सृजन से विद्यार्थियों के भल शैक्षणिक वातावरण मिलल और विश्वविद्यालय तीनों परिसरों में शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां ज्यादा प्रभावी ढंग से संचालित है सकल। सीमांत चमोई जिला नीति घाटी में आयोजित 6 दिनों के वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता आज मलारी बुरांस खेल मैदान में समापन है गए। प्रतियोगिता विजेताओं के खेल विभाग तरफा बटी सम्मानित करी गए। खेल विभाग और जिला प्रशासनक तरफा बटी गमसाली और मलारी में 3-3 दिनों की प्रतियोगिताएं आयोजित करी गई थी। इनर उद्देश्य सीमांत गांवों के खेल प्रतियोगिता गाँव के प्रोत्साहितकरण पारंपरिक खेलों के बढ़ावा देण और पलायन रोकणक दिशा में सकारात्मक कोशिश करण छू। जिला क्रीड़ा अधिकारी मोहित सिंगल बता के प्रतियोगिता में स्थानीय मैसोल बढ़ चढ़वे भाग ले वे स्थानीय गाँव वालों पहलक स्वागत करो और भविष्य में ले यस प्रतियोगिताएं आयोजित करण और नीति घाटी अन्य गाँवों के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल करने मांग करो। अंत में मुख्य समाचार।

0: एक बारी फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दगड़ प्रदेशक सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करे। राज्यक सड़क अवसंरचना है जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए परियोजनाओं पर बने सहमति। प्रदेश में भोलबटी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त है जाल। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का संचालन नई व्यवस्था के भीतर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करण। राज्य में 4 जुलाई बटी जनजनक सरकार जनजनक द्वार अभियानक दूसर चरण शुरू होल। और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसूनक दस्तक। मौसम विभागल कई जिलों में बहुत भारी दियो गौड़ाट चाल चमकण और तेज बयावक चेतावनी जारी करी। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार समाप्त हुनी। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रही हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए भले सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म अजनबी में। गीत दिखाया अनंत बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

एक मुसाफिर एक हसीना, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में आशु भोसले और मोहम्मद रफी को। गीत रचना SS बिहारी की और संगीत रचना OP नैयर की।

चौथे समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा आर डी बर्मन का संगीतबद्ध फिल्म अनामिका का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

चित्चोर श्रोता, अभी इस फिल्म में आपने सुना येसुदास को। गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे दीजिए प्रस्तुत है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए पहले सुनते हैं गुलाम अली को।

0: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले

एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 21 पदक जीते। वहीं अंडर 20 में कई भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से शुरू। BCCI ने एशियन गेम्स के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। टीम की कमान हरमनप्रीत को सौंपी। और रैपिड एंड ब्लिट शतरंज टूर्नामेंट क्रोएशिया के जागरेब में कल से शुरू। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: मोरक्को ने मोंटेरी स्टेडियम में नीदरलैंड पर पेनल्टी शूटआउट में जबरदस्त जीत के साथ फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। 1-1 से बराबरी के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया। पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने 3-2 से जीत हासिल की। 72वें मिनट में कोडी गैपको ने गोल करके नीदरलैंड को बढ़त दिलाई। क्राइसेंसियो समरविले के गोल के सामने एक शानदार रन और ऑफ बैलेंस टचबैक ने गैपको को गोल करने में मदद की। गैपको अब विश्व कप में नीदरलैंड के लिए 6 गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह सिर्फ जॉनी रैप से पीछे हैं, जिन्होंने कुल 7 गोल किए थे। मोरक्को ने 91वें मिनट में बराबरी का गोल करके वापसी की। सेंट्रल डिफेंडर इसा डियोप ने अतिरिक्त समय की शुरुआत में स्थानापन्न जेम्स डाइन टेल्बी के क्रॉस पर हेडर मारकर गोल कर दिया। मोंटेरी में 120 मिनट का रोमांचक मैच उतार चढ़ाव वाला रहा और रेगुलर या एक्स्ट्रा टाइम में कोई विनर नहीं बन पाया। पेनल्टी किक के दौरान दोनों देशों ने अपनी पहली 2 कोशिशों में से 1 में चूक की, तीसरी में गोल किया और फिर चौथी में चूक गए। यासीन बोनू ने क्राइसेंसियो समरविले का शॉट बचाया और इस्माइल साइबारी ने अपना गोल करके जीत हासिल करी। यासीन बोनू ने शूटआउट में बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं एक अन्य राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में पैराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को पराजित किया। पैराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर यह कारनामा किया। बोस्टन स्टेडियम में खेला गया मुकाबला निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। फीफा विश्व कप के इतिहास में जर्मनी इससे पहले कभी पेनल्टी शूटआउट में नहीं हारा था। इस बार भी टीम ने आखिरी तक संघर्ष किया। अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नोयर ने शानदार बचाव कर जर्मनी की उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन आखिरकार पराग्वे ने अपने तीसरे निर्णायक मौके का फायदा उठाकर अंतिम 16 में जगह बना ली। मैच के 42वें मिनट में जूलियो एंसेसो ने गोल करके पराग्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में फ्लोरियन विटर्स के क्रॉस पर काई हेवटर्स ने हेडर से गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद जोनाथन टाह ने भी हेडर से गोल किया, लेकिन उसे अमान्य करार दे दिया गया। तय समय तक कोई और गोल नहीं हुआ, इसलिए मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। शूटआउट की शुरुआत जर्मनी ने की, लेकिन कोई हेवर्ट्स की पहली पेनल्टी पर पराग्वे के गोलकीपर के हाथों बचाव किया गया। इसके बाद मॉरिसियो ने गोल कर पराग्वे को बढ़त दिला दी। हालांकि जोशुआ किमिख ने अगली पेनल्टी पर गोल करके जर्मनी की वापसी कराई। इसके बाद गुस्तावो गोमेज ने गोल कर पराग्वे को 2-1 से आगे कर दिया, लेकिन जमाल मुसियाला ने शानदार शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया। रोमांच तब और बढ़ गया जब मटियास गोलार्जा ने गोल करके पराग्वे को जीत के करीब पहुंचा दिया, जबकि जर्मनी के लिए निक वोल्टमेट का अगला प्रयास रोक दिया गया।
2: Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history. Germany are leaving a World Cup.
1: उधर 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने भी जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले

0: हाफ में पिछड़ने के बावजूद कासेमिरो और गैब्रियल मार्टिनेली के गोलों की बदौलत ब्राजील ने आखिरी मिनटों में यादगार जीत दर्ज की। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप में हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और हर मुकाबला एक नई दास्तां लिख रहा है। और अब रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में इस वक्त एलिना रिबाकिना का मुकाबला लोइस बॉयसन से जारी है। वहीं पुरुष सिंगल्स में जे मेंसिक और टी सैमुअल के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं कल यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आइए जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
2: पुरुष सिंगल्स के पहले चरण में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 3.5 घंटे तक चले मुकाबले में मियोमिर कैकमेनोविच को 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 से हराया। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में सिनर ने कई गलतियों के बावजूद मुकाबला अपने नाम किया। कैकमेनोविच ने तीसरे सेट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अहम पॉइंट्स हासिल किए। अनफोर्स्ड एरर को कम करके निर्णायक सेट तक पहुंचने के बाद सिनर ने मैच पर पकड़ बनाई और जीत हासिल की। दूसरे राउंड में सिनर का मुकाबला पुर्तगाल के नोनो बोर्जेस से होगा। सिनर ने इस जीत के साथ ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में 94 मैच जीत लिए हैं। उन्होंने इटली के खिलाड़ियों में निकोला पियत्रांगेली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं 3 घंटे और 11 मिनट तक चले एक और रोमांचक मुकाबले में 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने अपने 21वें विंबलडन अभियान की शुरुआत चीन के यिबुंग वू को 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से हरा कर की। पहले सेट में दुनिया के 102वें नंबर के चीनी खिलाड़ी ने 15 विनर्स लगाए, हालांकि उतनी ही संख्या में अनफोर्स्ड गलतियां भी की। इस साल केवल 5 टूर्नामेंट खेलने वाले जोकोविच ने तीसरे सेट के अंत में पूरी ताकत झोंक कर वू की सर्विस ब्रेक की। जोकोविच ने संघर्ष करते हुए तीसरा सेट अपने नाम किया और फिर चौथे सेट में अहम मौकों पर पूरी तरह नियंत्रण बनाकर विंबलडन के पहले दौर में अपना रिकॉर्ड 21-0 कर लिया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: पर अब बात कर लेते हैं कुश्ती एशियन चैंपियनशिप पर। थाईलैंड के पटाया में एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 21 पदक जीते। वहीं अंडर 20 के अलग अलग वर्ग में नीरज पटेल, आर्यन मलिक, विकास और दिशांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 15 फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम पहले स्थान पर रही। भारतीय लड़कों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। 52 किलो में प्रथमेश सूर्यकांत पाटिल, 62 किलो में नैतिक, 75 किलो में हर्षद केशव और 85 किलो में विवेक चौहान ने स्वर्ण पदक जीते। नीतीश ने 57 किलो में एकमात्र रजत पदक अपने नाम किया। 41 किलो में गौतम, 44 किलो में अहलावत वंश और 68 किलो में अरमान ने कांस्य पदक हासिल किए। वहीं ग्रीको रोमन में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही। 62 किलो में दर्पण राजू चौधरी ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। 48 किलो में यश, 75 किलो में गौरव पाटिल, 85 किलो में जतिन ने रजत हासिल किए। एकमात्र कांस्य पदक 57 किलो में धौनचक ने जीता। प्रतियोगिता के अंतिम दिन महिला कुश्ती टीम ने शानदार प्रदर्शन कर दूसरा स्थान हासिल किया। 33 किलो में समृद्धि पाटिल, 46 किलो में विनाक्षी और 66 किलो में दिशा ने स्वर्ण पदक जीता। दिव्या रानी ने 36 किलो में और ध्यानेश्वरी ने 42 किलो में रजत पदक जीता। निशा ने 54 किलो, दीपांशी ने 58 किलो, अंजलि ने 62 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत मेजबान इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल चेस्टर ले स्ट्रीट में खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम हाल ही में आयरलैंड से मिली हार के बाद नई शुरुआत की तलाश करेगी। वहीं इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर दावेदारी पेश करना चाहेगा। इस सीरीज में सभी की निगाहें 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें आयरलैंड के विरुद्ध T20 सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था। इस बीच एशियन गेम्स 2026 के लिए BCCI ने आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। ये प्रतियोगिता जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।

0: एशियाई खेलों 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया उतरेगी। भारत ने इससे पहले चीन के होंगजाऊ में हुए एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। टीम की बात करें तो उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ शैफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिगेस बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी को मजबूती देंगी। विकेट कीपर के तौर पर ऋचा घोष और कामलिनी को टीम में जगह नहीं मिली है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्विंग स्पेशलिस्ट रेणुका सिंह ठाकुर और अनुभवी अरुंधति रेड्डी के कंधे पर होगी। राधा यादव और श्रेयंका पाटिल स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को छकाएंगी। श्रेयंका चोट के कारण T20 विश्व कप से बाहर हो गई थी। यस्तिका भाटिया जो विश्व कप टीम का हिस्सा थी उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। अमीषा स्पोर्ट्स कैन।
1: वहीं ICC ने महिला T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। श्री चरणी गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है। वहीं बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जॉर्जिया वोल पहले स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। T20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने शीर्ष पर अपनी जगह बनाए रखी है। और अब बात हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज बेल्जियम के आगामी एक्सपोजर टूर के लिए 22 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। ये टूर 5 से 18 जुलाई के बीच खेला जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस एक्सपोजर हॉकी टूर के दौरान युवा भारतीय टीम यूरोप की मजबूत टीमों का सामना करेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के खिलाफ 2-2 मैच जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ 1-1 मैच खेलेगी। इस एक्सपोजर टूर से टीम को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले उन्हें अपने कॉम्बिनेशन और खेलने के तरीके को परखने में मदद मिलेगी। इस टूर के लिए डिफेंडर अनमोल इक्का को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। गोलकीपिंग यूनिट में विवेक लाकरा और कुणाल तेवतिया शामिल है। डिफेंस लाइन में कप्तान अनमोल इक्का, रोहित कुल्लू, चिराग रविंदर, प्रशांत बारला, संजीत तिर्की और वी मणिमारन शामिल हैं। मिडफील्ड की जिम्मेदारी अद्रोहित इक्का, हरपाल, जीत पाल, मुकेश टोपो, मनु मलिक और ऋतिक लाकरा संभालेंगे। फॉरवर्ड लाइन में अजीत यादव, रवदीप सिंह, अर्जुन हरगुड़े, आर्यन जेस, लवनूर सिंह, कोनैन और गुरुसेवक सिंह शामिल हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 10 जुलाई को मेजबान बेल्जियम, 13 जुलाई को जर्मनी, 14 जुलाई को फिर से बेल्जियम और 17 जुलाई को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलकर दौरे का समापन करेगी। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया के जागरेब में कल से रैपिड एंड ब्लिट शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है जो शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा मंच है। ग्रैंड शतरंज टूर के अंतर्गत इस साल की ये तीसरी प्रतियोगिता होगी और इसके बाद 3 और प्रतियोगिताएं होनी है। इस प्रतियोगिता में रैपिड शतरंज के 9 दौर जबकि ब्लिट शतरंज के 18 दौर खेले जाएंगे। रैपिड में हर जीत के लिए 2 अंक और ड्रॉ के लिए 1 अंक मिलेगा जबकि ब्लिट्स में जीत के लिए 1 अंक और ड्रॉ के लिए आधा अंक दिया जाएगा। उज्बेकिस्तान के नोदरबेक अब्दुल सत्तारोव, सर्बिया के इवान सारिक और रोमानिया के डीएक बोगदान डैनियल भी प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। और अब बात बैडमिंटन पर। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने आज अगले 2 विश्व के विश्व टूर कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट फरवरी 2027 और जनवरी 2028 में खेला जाएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 27 जुलाई से 1 अगस्त 2027 के बीच लखनऊ में होगा। वहीं 2028 में 25 से 30 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी

0: भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई

0: हाई ग्रेड प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक।

0: रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़क वासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया।

0: पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living

जॉनी मेरा नाम। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में किशोर कुमार और उषा खन्ना को। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का एक गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी गजलों का कार्यक्रम महफिल।

महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार जोशी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपनी फरमाइशी खूबसूरत गजलें, जिनके लिए आप सभी ने खतों और व्हाट्सएप के जरिए हमसे गुजारिश की है। दोस्तों, कम शब्दों में दिलों के गहरे एहसासों को उजागर करने का नाम है गजल, जिसमें न केवल प्रेम विरह बल्कि उम्मीद, अध्यात्म और जीवन दर्शन जैसे विषय भी सुरीले अंदाज में पेश किए जाते हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज की महफिल का जगजीत सिंह की गाई इस गजल से, जिसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। ग्राम नागरकोटा, जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुनी देवी साहू, प्रेमा, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू।

उस गजल में ऐसे तरन्नुम होते हैं जिनसे लोग खुद को जोड़ पाते हैं, और जब इसे सुरों में गाया जाता है तो उसका असर और बढ़ जाता है। इसलिए गजल सुनने वाला उसमें अपने जीवन की झलक महसूस करता है। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गजल। फनकार हैं हरिहरन और सुनने के तलबगार हैं रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, मिर्जा गालिब का ये मशहूर शेर हर गजल प्रेमी की जुबान पर होता है। गजलों के दीवाने जानते हैं कि गजल की एक छोटी पंक्ति भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देती है। गजल का हर शेर अलग अर्थ और संदेश देता है। तो आइए सुनते हैं एक लाजवाब गजल जिसे आवाज दी है जगजीत सिंह ने।

दोस्तों, गज़लों में केवल शायरी ही उम्दा नहीं होती, बल्कि मौसीकी और गायकी भी शानदार होती है। तभी तो गज़ल हिंदी और उर्दू के बेहतरीन साहित्य से लोगों को जोड़ती है। तो आइए महफिल की आखिरी पेशकश में सुनते हैं मुन्नी बेगम की गई गज़ल, जिसे सुनना चाहते हैं लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू सामिया, आफिया, मुमताज़ अमान, माही, नीलोफर, शन्नू और शब्बू।

मौसीकी और गायकी भी शानदार होती है, तभी तो गजल हिंदी और उर्दू को के बेहतरीन साहित्य से लोगों को जोड़ती है। तो आइए महफिल की आखिरी पेशकश में सुनते हैं मुन्नी बेगम की गई गजल, जिसे सुनना चाहते हैं लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू सामिया, आफिया, मुमताज़ अमान, माही, नीलोफर, शन्नू और शब्बू।

दोस्तों, आज की इस दिलकश महफिल में आपने सुनी चंद फरमाइशी लाजवाब गजलें। इसी के साथ अपने दोस्त मनोज कुमार जोशी को आज की महफिल संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गजलों का कार्यक्रम महफिल। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्योंकि 2 विकेट लिया है और नॉट आउट रही हैं और लास्ट में जो उन्होंने 34 रन बनाए हैं।
2: अब आशा तय करेंगे।
3: मुझे मुझे संकट में डालती है।
2: आप कोई तीसरा दावेदार भी लाइए।
3: नहीं, तीसरा दावेदार वैसे है नहीं, इन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है जिसने 50 बैट मॉर्निंग ने 50 करा है तो,
2: और विकेट कीपिंग भी तो किया है। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि 20 ओवर उसने कीपिंग भी तो की है।
3: हाँ, करी तो है, सही बात बोली है आपने। तो इसी डाउट में मैं बैट मॉर्निंग को बोलती हूँ।
4: राइट, ओके। क्योंकि द गेम टुडे इज ओवर ऑब्वियसली, बट आप ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में जा रही है, क्या आपको ऐसा लग रहा है आशा कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस वक्त अपने खेलने के अंदाज से एक इनविंसिबल टीम लग रही है जिसको शायद कोई भी ना हरा पाया?
3: मैं हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फाइनल में पहुंची है, बट आप इंग्लैंड को भी कम
4: या फिर साउथ अफ्रीका,
3: हाँ अभी तो चलिए, हाँ वो तो गेम भी बचा है, वो तो डिसाइड करेगा 2 तारीख को ही करेगा। पर ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से आज का भी मैच उन्होंने जो खेला है, तो उनकी जो सारे, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटिंग है, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा है, सब ने दिया है। बॉलिंग में भी देखिए आप या फील्डिंग में भी देखिए, हाँ एक दो कैचेस उनसे भी छूटी हैं, बट ये है कि उनकी जो साइड है वो एक, अगर आप वेल मैं एक बिल्कुल मतलब पैक्ड है कि बैटिंग भी है उनके पास, ऑलराउंडर भी है उनके पास, उनके पास बॉलर भी अच्छे हैं। तो जैसे बैट मॉर्निंग और इवन सब फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे अगर आप बैट मॉर्निंग की बात करें या एश गार्डनर की बात करें या पैरी की बात करें, तो सारे अच्छा कर रहे हैं। टीम ग्राफ है,

0: shows that everyone had to chip in, and we probably missed that aspect of having someone have a really big or a really good tournament. But at the same time, for us to get to that, this stage with that happening, it definitely shows that we have a lot more people playing roles now, and we can only get better with it.
1: Yep, and we're expecting that as well from you guys as well, particularly because of your leadership. Thanks for your time, and we'll see you in the next
0: one. Thank you.
1: Cheers, Hayley. I'll get Sophie Molyneux to come on in. First time captaining in the T20 World Cup through undefeated. Pretty easy, this captaincy stuff, is it?
2: No, it's not.
1: Not so much. What have you learned over the last couple of weeks?
2: Yeah, heaps. I think the T20 World Cup, you just have to ride it. It's full of momentum, swings, but yeah, look, I've really enjoyed it. I think the group's really enjoyed it, and that's probably the biggest thing for us. And yeah, we've helped ourselves, well, we've stopped ourselves from thinking too far ahead, but now we can think about the final, which is pretty cool.
1: You come out to the middle, you've got your team plans, and all of a sudden you would have known as well that Deandra Dotton probably might not have been coming out. So in your back of your mind, how much does that change your plans?
2: I actually had no idea.
1: There you go.
2: yeah, I didn't know until maybe five or six overs in that she wasn't, and then she did, and she made an impact. So, yeah.
1: But you might have had to change your plans from the approach that Joseph and Hayley Matthews had at the start. They certainly didn't come out with that firepower. Is that why you kept the seamers on for a little bit longer?
2: Yeah, I think with the new ball there, like Kimmy always shapes the ball and bowls beautifully in the power play. And loose.
3: वो बनाना पड़ेगा एक roadmap.
4: जी. आपसे देवेंद्र जी एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपका बतौर कोच कैसा अनुभव रहा है, किस तरह के नए युवा आपको बीते वर्षों में देखने मिले?
3: देखिए, मेरा तो कोचिंग लाइन के साथ साथ मैनेजमेंट लाइन भी मेरी साथ रही है. मैंने मेरा उद्देश्य क्या रहा है, हमेशा मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जहाँ मैं रहता हूँ, मैं उस क्षेत्र से उन बच्चों को कैसे ऊपर उठाऊँ, उनको कैसे आगे बढ़ाऊँ. अगर जिस बच्चे में अगर पोटेंशियल है, ये बच्चे के अंदर टैलेंट, 7-8 साल में उसके टैलेंट का भी पता चल जाता है. अगर एक अच्छा कोच होगा ना, तो वो कोच को समझ में आ जाएगा ये बच्चा आगे इन फ्यूचर कुछ कर सकता है. तो इस तरह से कई मतलब स्पोर्ट्स इवेंट और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, ये करना, छोटे लेवल से लेके ग्रास रूट से बच्चों के लिए काम करना और उनको आगे बढ़ाने को लेके. और हमने जहाँ तक कोचिंग की बात है, कोचिंग में बेसिकली मैं जब इंडिया टीम के साथ था अंडर 19 SGFI का, उस समय एशियन चैम्पियनशिप में मैं एज ए मैनेजर भी रहा टीम के साथ. तब मैंने उस समय के दौरान मैं पूरा कोचिंग जो लेवल था पूरा हमारे टीम मैनेजमेंट जो कर रही थी पूरा, तो मैं साथ में ही रहा पूरा. मैं तो उस चीज़ को देखा कि किस तरह से मतलब खिलाड़ियों के लिए बेस्ट से बेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या दे सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिपेंड करती है, और बच्चों को प्लेटफॉर्म देना भी बहुत ज़रूरी है. अब कोचिंग हम कराते रहें और बच्चे को आगे अगर कोई हम खेलने का एक्सपोजर ना दें, उसको आगे खेलने के लिए कहीं एक प्लेटफॉर्म ना दें, तो बच्चा क्या है ना, जब हम उसको खिलाते हैं तो खेलता तो बहुत अच्छा है. कोई बच्चा खेलता अच्छा है लेकिन मैच खिलाओ तो मैच में नहीं खेल पाता है, क्योंकि हम उसको वो एक्सपोजर दे नहीं पाते हैं मैच का. हम उसको खिलाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये खेलता तो अच्छा है लेकिन ये मैच में नहीं खेल पा रहा है. तो इस तरह से छोटे बच्चों को आने वाले टाइम पे कुछ जैसे अकादमी बना, अकादमी के साथ मैच करना, ये करना, उधर खिलाना, ये खिलाना, बच्चों को अपने आप में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आने उनका परफॉर्मेंस लेवल भी अप होता है. तो प्रयास ये रहा है कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो कोचिंग के लेवल से, और अच्छे स्तर की कोचिंग मिले, तो यही हमारी प्राथमिकता भी रही है हमेशा.
5: दोस्तों, अब बात करते हैं एक युवा खिलाड़ी से जिनका नाम है शाश्वत पवार, जिन्होंने भारत का अंडर 17 में प्रतिनिधित्व किया है. शाश्वत, आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा और आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे?
6: मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, काफी हार्ड वर्क करा है और मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है. जिनसे मैंने खेलना सीखा है, जिनको देख के मैंने खेलना सीखा है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं जब से मैं छोटा हूँ. उन्हीं को मैंने देख के खेलना स्टार्ट करा है एंड हाफ वर्ल्ड कप में भी मैं उन्हें ही सपोर्ट कर रहा हूँ.
5: अगर मैं पूछूँ कि अगर रोनाल्डो के अलावा आपको किसी को चुनना पड़े तो कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट होगा और क्यों?
6: आई वुड चूज मेसी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब वो गॉड गिफ्टेड है एंड उनमें सारी क्वालिटी. रोनाल्डो हार्डवर्क से बने एंड उन पर मेसी पे ऑलरेडी टैलेंट था.
5: तो किस मैच

0: शाश्वत आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो फीफा वर्ल्ड कप में?
1: अगर ऐसा होता है तो मैं पोर्चुगल और फ्रांस को देखना चाहता हूँ फाइनल।
0: ओके, तो आपके अभी आपको क्या लगता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप इस बार 2026 का चल रहा है, इसमें कौन से नए उभरते सितारे आपको दिख रहे हैं, इनमें वो बात है ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं?
1: इस बार बहुत छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं वो बहुत अच्छा कर रही है, एंड जो टॉप की जो कंट्रीज है जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है तो उनको काफ़ी टक्कर दे रही है इस बार, काफ़ी अच्छा है देखने को मिल रहा है इस बार वर्ल्ड कप।
0: अगर कोई यूथ, कोई बच्चा आपको अभी सुन रहा है जो जिसकी उम्र अभी 10-12 साल है, तो क्या सलाह आप उसे देना चाहेंगे कि वो भी अंडर 17 खेले, वो भी और आगे जाए?
1: मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में अप एंड डाउन बहुत सारे आते हैं, कभी कभी तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम थक जाते हो कि हार्डवर्क नहीं करना है क्योंकि तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए स्ट्रॉन्गली एंड हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए और हार्डवर्क करते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब तक आप हार्डवर्क कर रहे हो और आप सही से काम कर रहे हो आप कभी हार नहीं सकते हो।
2: और अब बात करें हॉकी की, तो FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम शानदार फॉर्म में है। 24 जून को भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया, जबकि 26 जून को वापस 7-1 की जीत भारत ने दर्ज की, और इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ मैच निर्धारित समय तक 0-0 से बराबर रहा, लेकिन शूट आउट में भारत ने 3-2 से जीत हासिल कर एक अतिरिक्त अंक अपने नाम कर लिया है। बैडमिंटन की बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में खेले जा रहे US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के अनुभवी शटलर किदांबी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश कर लिया था। सेमीफाइनल में श्रीकांत ने जापान के युदायोकी मोटो को 1 घंटे 12 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया, और खिताबी मुकाबले में उनका सामना चीनी ताइपे के सुलियांग से हुआ, जहां पे वे मुकाबले से बाहर हो गए। वहीं भारत के रौनक चौहान का अभियान सेमीफाइनल में समाप्त हो गया और महिला एकल में भारत की देविका सिहाग डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफर्सन से हारकर बाहर हो गई। वहीं एथलेटिक्स में भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में 2.30 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया, और साथ ही वे 2.30 मीटर की ऊंचाई पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। वहीं महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजन ने 6.71 मीटर की छलांग लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेनिस जगत की खबर है कि लंदन में वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का शानदार आगाज हो चुका है। भारत की यूपी भाभरी पुरुष युगल स्पर्धा में अपने अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे के साथ 1 जुलाई को पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे। शतरंज की बात करें तो ग्लोबल चेस लीग के चौथे सत्र के लिए मुंबई में खिलाड़ियों का ड्राफ्ट आयोजित किया गया। इस बार पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन की लीग में वापसी हुई है, जबकि भारत की युवा स्टार दिव्या देशमुख पहली बार इस प्रतिष्ठित लीग का हिस्सा बनी है। ड्राफ्ट के बाद सभी 6 फ्रेंचाइजियों ने अपनी अपनी टीमों का चयन पूरा कर लिया है। ग्लोबल चेस लीग का चौथा सत्र 3-13 सितंबर तक बेंगलोर में खेला जाएगा। शूटिंग से खबर है कि जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 पदक अपने नाम किए। भारतीय निशानेबाजों ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के 2026 एशियाई खेलों में भाग लेने की पुष्टि हो गई है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि नीरज एक बार फिर पदक जीतकर अपना खिताब बरकरार रखेंगे। वहीं खेल प्रेमियों की निगाहें आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी टिकी हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे। इसके बाद वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर को मिली है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है और 2036 ओलंपिक की तैयारियों की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब बात करते हैं क्रिकेट जगत की ताज़ा हलचल की। महिला T20 विश्व कप 2026 में भारत का सफर यहीं समाप्त हो गया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने भी टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अनुभवी

0: लिस पेरी और एश की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लगातार पांचवी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले कुछ इस प्रकार होंगे। ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका। इन चारों टीमों के बीच अब फाइनल का टिकट पाने की रोमांचक जंग देखने को हम सभी को मिलेगी। भले ही दोस्तों भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन ने LA 2028 ओलंपिक के महिला क्रिकेट इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं हम बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो भारतीय पुरुष टीम इन दिनों आयरलैंड के दौरे पर दो T20 मैचों की सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के दूसरे और अंतिम मुकाबले के बाद आयरलैंड ने भारत को 2-0 से सीरीज हराकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है कि जब आयरलैंड ने किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में भारत को हराया है। अब भारतीय टीम की अगली चुनौती इंग्लैंड दौरा होगी, जहां 1 जुलाई से दोनों टीमों के बीच 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह जी। आप एक अनुभवी क्रिकेट कोच हैं। आपके द्वारा प्रशिक्षित युवा रणजी ट्रॉफी अंडर 16, अंडर 19 भी खेले हुए हैं। हरप्रीत जी, आज भारतीय क्रिकेट दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है, आपके अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है?
1: सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि हमारी जो 20-23 बॉडी है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। उनको हर एक टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है, अच्छे कोचेस, अच्छे स्पोर्ट स्टाफ, उनको फिजियो, डॉक्टर, एनालिस्ट वगैरह। और मेन है कि उनकी फिटनेस पे भी बहुत काम हो रहा है। हर टाइप के अच्छे ग्राउंड उनको दिए जा रहे हैं, उनका आना जाना, रहना, खाना पीना सब बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर अवेलेबल कराया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी भी अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैच फीस अच्छी मिल रही है खिलाड़ियों को, जिससे वो और मोटिवेट होकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगातार काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को क्रिकेट की ओर अगर और आगे हमें बढ़ाना है तो किन चीजों पर काम करने की जरूरत है?
1: मेन तो ये है कि उनका जो मैच फीस वगैरह है वो जरा हमारे पुरुष टीम को मिलती है उसके थोड़ा बराबर मिलनी चाहिए। दूसरा, उनको फैसिलिटीज पूरी दी जाए ग्राउंड्स की, उनको प्रॉपर उनके मैच कराए जाए, कंपटीशन कराया जाए और उनके ट्रेनिंग कैंप अलग अलग एज ग्रुप में कराए जाने चाहिए। हालांकि प्रयास किया जा रहा है और काफी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है उसका, लेकिन मुझे लगता है कि और अच्छा हो सकता है अगर उनको मैच फीस वगैरह और अच्छी उनको दी जाए। क्योंकि मेन जो हमारी महिला क्रिकेट में मुझे लगता है जो है थोड़ा फिटनेस का इशू है, थोड़ा सा फिटनेस पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। उनके बगैर ट्रेनिंग कैंप वगैरह इस टाइप के ऑफ सीजन में भी लगाए जाने चाहिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट से, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसमें।
0: और आजकल हम देखते हैं कि IPL की भी बड़ी धूम है, वो हमेशा से रही है, तो IPL की वजह से छोटे शहरों और गांव के खिलाड़ियों को कितना फायदा मिला है?
1: काफी फायदा हुआ है बच्चों को, जो गांव के हैं, जो दूर दराज के हैं। पहले उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पर लेवल तक क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन अब जो IPL के ओनर्स हैं उनकी नजर रहती है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कि वहाँ कौन बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई बच्चा अच्छा है, मेहनती है, टैलेंटेड है और वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो एक तो IPL के जो ओनर हैं उनकी नज़र रहेगी उसके, वो पिक कर लेते हैं। दूसरा ये है कि वो बगैर ट्रेनिंग कैंप वगैरह लगाते रहते हैं वहाँ पे, इन खिलाड़ियों को बुलाया जाता है, तो जो दूर दराज की लड़कियाँ हैं, गाँव देहात की हैं, तो उनको एक अच्छा वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है इससे। दूसरा, उनकी फीस भी अच्छी खासी है, उनकी मैच फीस अच्छी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है, जो टेस्ट में नहीं आ सकता खिलाड़ी या वनडे नहीं खेल सकता, कि वो IPL में भी अपना को दिखाए, शो करे और अच्छी खासी मैच फीस उसे मिल जाती है वहाँ भी।
0: अगर हरप्रीत जी आपको एक मौका मिला जाए कि आप भारतीय क्रिकेट में एक बदलाव कर सकते हैं, तो आप वो कौन सा बदलाव करना चाहेंगे?
1: मेन तो खैर सब चीज़ें वहाँ अच्छी हैं, मेन मैं यही कहूँगा कि जो महिला क्रिकेट है उसको पुरुष क्रिकेट के बराबर दर्जा दिया जाए, उसको मतलब उतनी ही उसकी मैच फीस दी जाए उनको, उनको खूब। बाकी तो मेल क्रिकेट हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत सब फैसिलिटी भी मिल रही हैं, तो ज़रूरत है महिला क्रिकेट पर काम करने की, उनको अच्छे ग्राउंड्स वगैरह, अच्छी फैसिलिटीज, ताकि जहाँ भी उनके मैच हों थोड़ा उनका प्रचार भी अच्छा किया जाए, ताकि पब्लिक भी देखने जाए। और मेन है उनकी फिटनेस पे काम किया जाए, उनके कैंप लगाए जाएँ और उनके कंपटीशन मैचेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तो उस दिशा में थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। बाकी मेल क्रिकेट में तो खैर बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी सब वो उसमें रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और BCCI भी अच्छा काम कर रहा है उसमें, बड़ी जो रिच बॉडी है काफ़ी, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसमें।
0: और अगर मैं बात करूँ सर टेस्ट, वनडे और T20 जैसे फॉर्मेट्स की, तो तीनों फॉर्मेट में सफल होने के लिए किसी एक खिलाड़ी में कौन कौन सी गुणों की आवश्यकता है?
1: मैम, टेस्ट का तो समझ लीजिए कि वो तो एक अलग वो क्राइटेरिया है, उसमें तो खिलाड़ी को अपना पेशेंस, टेम्परामेंट और स्ट्रेंथ सारी दिखानी पड़ती है, और मेन क्रिकेट वही टेस्ट क्रिकेट ही है। वनडे में थोड़ा ये होता है कि आपको वनडे ले लीजिए या T20 ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ टेम्परामेंट तो खैर चाहिए खिलाड़ी में, थोड़ा वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन भी अच्छा होना चाहिए, वेरिएशन वगैरह अपना

0: मेन है कि आप हर कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकें, वनडे में और T20 में। और जो T20 फॉर्मेट है मैम, वो तो यंग लड़के के लिए बहुत अच्छा है। तो यंग है जिसे हर बॉल पे हिट ही करना है, या फिर बॉलर्स को वेरिएशन करने हैं, जो इन चीज़ों में दक्ष होगा वो अच्छा कर परफॉर्म कर पाएगा। T20 का अलग फॉर्मेट हो गया, टेस्ट का अलग हो गया, वनडे का अलग हो गया। मेन है कि कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना। ओके, खिलाड़ी इसमें महारत भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अलग है, वनडे और T20 का फॉर्मेट अलग है।
1: हम अक्सर कहते हैं ना कि अगला विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी किसी भी राज्य से आ सकता है। अभी हमें कई सारे युवा साथी सुन रहे होंगे, तो आपके अनुसार ऐसा खिलाड़ी हमें उत्तराखंड से कब देखने को मिल सकता है?
0: थोड़ा अगर समय मिलेगा तो ये कोई ना कोई विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से भी निकलेगा। मेन चीज होती है खिलाड़ियों को समझना चाहिए कि एकदम से रिजल्ट जल्दी नहीं आता, एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, एक लंबा अनुभव चाहिए होता है, पेशेंस, टेम्परामेंट, अपनी फिटनेस, टेक्निक पर काम करें। और दूसरा है कि ये दोनों खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, इनका मेंटली जो टफ है, ये लोग का मुकाबला करने के लिए खिलाड़ियों को काफ़ी लंबा टाइम चाहिए, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जैसे लास्ट टाइम हमारी उत्तराखंड की टीम रणजी में भी सेमीफाइनल में पहुँच गई थी, और इसमें 2-3 खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी हम रणजी में सेमीफाइनल तक पहुँच रहे हैं। थोड़ा उनको मौका मिलेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा, तो अपने आप को साबित करेंगे हमारे जो प्लेयर्स हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर यहीं पे ये खेलते सेमीफाइनल अपने उत्तराखंड में खेलते, तो शायद मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट दे सकते थे। और दूसरा ये है कि इनका मैच कर्नाटक जैसी मजबूत टीम से था, इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। 1-2 साल पहले ये क्वार्टर फाइनल तक भी पहुँचे थे, पहली बार ऐसा हुआ कि ये सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है खिलाड़ियों के लिए। आने वाले टाइम में खिलाड़ियों को मोटिवेट करेगा और अच्छा करने के लिए।
1: जैसे हमने IPL में देखा वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छे हिट ये करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या चीजें हैं जो इनसे हर एक युवा को सीखनी चाहिए, एक क्रिकेटर को खासकर सीखनी चाहिए?
0: मेन है कि उसका फोकस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बैकलिफ्ट और उसका बहुत एक्सपीरियंस, जितना उसने वर्कआउट किया है अपने गेम के ऊपर, उसका जो मैंने बोला ना मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी है उस बच्चे की, बॉल को पिक करना। जो पावर मुझे लगती है वो है उसकी बैकलिफ्ट, ठीक है ना, एक स्मूथ बैकलिफ्ट है उसकी, और हर बॉल पे वो अटैक करने की कोशिश करता है। और T20 का फॉर्मेट भी ऐसा है कि आपको हर बॉल पे हिट ही करना होता है। तो खिलाड़ियों की जरूरत है उसे सीखने की कि ऐसे इतनी छोटी सी एज है उसकी, इस छोटी सी एज में भी उसने कितना अपने पे काम किया होगा, अपनी फिटनेस पे कितना काम किया होगा। और मेन है उसका जो सिलेक्शन शॉट खेलने का बहुत अच्छा है, वो खिलाड़ी में डर नहीं होना चाहिए, वो बिना डरे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसको ये नहीं लगता कि बॉलर के सामने कौन सा है। जितना अच्छे से अच्छा बॉलर आ जाए, उसे अपने गेम पे विश्वास है, अपने गेम के अकॉर्डिंग ही वो उनको खेलता है।
1: अभी हरप्रीत जी, हमें काफी अभिभावक भी सुन रहे होंगे, चाहेंगे कि उनका बच्चा या बच्ची क्रिकेट में अपना भविष्य बनाए, तो आप क्या सलाह देंगे कि किस उम्र में इसकी प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए किसी बच्चे का?
0: मेन तो खैर ये है कि 10 से कम से कम बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए, अपना बेसिक पे काम करे पहले 10-12 साल तक, तो एज की बात कर रहा हूँ मैं, 8 से 12 साल तक अपना बेसिक, अच्छे कोच के पास जाए, अच्छे अकेडमी में जाए, अपने बेसिक चीज़ें ठीक रखे, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करे, अनुशासन से काम करे, ग्राउंड में जाए प्रॉपर करे, और 8 साल की एज ठीक है, 8 से स्टार्टिंग करे, 10-12 साल में थोड़ा सा और मेच्योर हो जाएगा, ताकि वो अंडर 14 को फेस कर सके। और एकदम से गार्जियन को तो ये सलाह कि एकदम से रिजल्ट की वो एक्सपेक्ट ना करें, ये चीज़ ऐसी है कि धीरे धीरे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। मेन क्रिकेट जो होती है वो स्टार्ट होती है अंडर 16 से, पूरा टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, 3-4 साल तो देने ही पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को निखारे, फिर जो रिजल्ट की आप उम्मीद करेंगे वो अंडर 16 के बाद ही वो बच्चा रिजल्ट दे पाता है। क्रिकेट में भविष्य बहुत अच्छा है, और बस जरूरत समर्पण की है, आप अनुशासन में रहते हुए अपना काम करें। बच्चों को तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप खूब मेहनत करें, देखिए मेन चीज़ है मेहनत, हार्ड वर्क। आज अगर आपको एक कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, एक बना के अपने मतलब कि आज हमने क्या करना है, कल क्या करना है, एक प्रोसेस से काम करेंगे, तो धीरे धीरे सफलता आपको मिलेगी। मेन चीज़ है आप कम्फर्ट जोन में ना जाएँ, ठीक है ना, कि आराम तलबी में ना जाएँ। जैसे आजकल का युवा है वो मोबाइल में और इन चीज़ों में ज़्यादा घुसा हुआ है, तो उसे उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक हद तक उसका उपयोग ठीक है, लेकिन आपको मेन काम ग्राउंड में ही आगे करना पड़ेगा, तो वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने कोच की बात माननी पड़ेगी, प्रॉपर आपको मेन है अनुशासन में रहते हुए हर चीज़ प्लानिंग के साथ आपको करने की आवश्यकता है। अपने बेस पे काम कीजिए, ठीक है ना, और कम्फर्ट जोन में मत रहिए, आराम तलबी मत रहिए, आपको मेहनत पसीना बहाना ही पड़ेगा ग्राउंड में आके, बिना उसके कोई शॉर्टकट है ही नहीं है सक्सेस के लिए। आप किसी भी खिलाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, कितने घंटे रोज उसने वर्क किया होगा, तब जाके उसको सफलता मिलती है।
1: इसी के साथ खेल दर्पण कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। खेल जगत की ऐसी ही रोचक खबरें, उपलब्धियां और खास बातचीत हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं ऋतिका आपसे अनुमति चाहूंगी, धन्यवाद।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी मालिनी राजू का राग केदार में गायन। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं बहुत कई। दुत तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं कंगनवा मोरा। तबला संगत आपके साथ की है सुभाष कामठ ने और हारमोनियम पर अरविंद ठाठे ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में श्रोता अभी आप सुन रहे थे विदुषी मालिनी राजुलकर का राग केदार में गायन। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध था, बोल थे बहुत कई। द्रुत तीन ताल में निबद्ध था, बोल थे कंगन व मोरा। आपके साथ तबला संगत की थी सुभाष कामट ने और हारमोनियम पर अरविंद ठाटे ने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है।